91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिश्रोताओ तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हां सारे इए ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिश्चितो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये ही बनी रिया कनिश्चित सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंडी।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज ते कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंगी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
5: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no.
5: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ।
6: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोच

0: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
4: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
5: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
4: Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
5: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

तो नदी और जिंदगी दोनों कभी भी नहीं रुकते। नदी रास्ते बदलती है और जिंदगी अक्सर हालात बदलती है। अगर नदी रुक जाए तो पानी सड़ने लग जाता है, और जिंदगी रुक जाए तो कहीं ना कहीं हम इंसानों के सपने टूटने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा बस चलते रहिए, क्योंकि ठहराव अक्सर जिंदगी की एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 12 जून 2026 के आज के इस खास अवसर पर। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत आप सभी की हो ही चुकी है डेली रूटीन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। और ये उत्साह हर पल इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए, इसी तरह से आप सभी के साथ रहना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि आए दिन नई नई चुनौतियाँ हमारे सामने आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आती हैं, तो ये तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन इनको देखकर अगर हम रुक गए, डर गए, टूट गए, तो फिर ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। तो आप जिंदगी में रुकना चाहते हैं या आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं? मैं तो यही उम्मीद करूंगी दोस्तों कि आप तो जिंदगी में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए हर एक परेशानी का डटकर सामना कीजिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। तो फिलहाल हमें अपने कार्यक्रम को खूबसूरत बनाना है, प्यारा बनाना है, और आप सभी जानते हैं कि उसके लिए बातों के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं हमारे लिए प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ आप सभी इस बहुत ही प्यारे से गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, इसी प्यारे से मनोरंजन के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, और आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की ओर। तो दोस्तों, इस समय अगर हम खास करके ये योल धर्मशाला के बीच की अगर हम बात करें, तो इस समय धर्मशाला का जो तापमान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धर्मशाला थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, अगर आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ तो फिर और ज़्यादा ठंड बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा बारिश कल शाम को, और आंधी तूफान के साथ, गर्जन के साथ जो है आप सभी ने देखी ही है। तो ऐसे में थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो ही गया है, तो जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ जाते हैं तो वैसे ही ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस समय यहाँ की बात करें तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी तापमान महसूस कर सकते हैं, और इसी के साथ बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारा आंखों देखा हाल तो हम जान लेते हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से किस तरह से अलर्ट किया जाता है, सावधान किया जाता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को किसी भी मुसीबत में न डालें। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों का मौसम होता है और जरा सा भी हम थोड़ा सा इसमें गर्मी में आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो मन करता है कि क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए। खास करके बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो नदी नालों में नहाने के लिए निकल जाते हैं, और एकदम से मौसम ख़राब हो तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि अब तो मानसून आने का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में हम अपनी जान के साथ कोई भी समझौता ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए, मौसम विभाग की तरफ से किस तरह से आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है या सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, ये जानते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के ऑरेंज येलो अलर्ट के बीच प्रदेश में गर्मी का दौर अभी भी जारी है। गुरुवार की बात करें तो निचले और मैदानी इलाकों में तापमान कई जगह 40 डिग्री के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया, जबकि पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी सामान्य से अधिक गर्मी दर्ज की गई। जी दोस्तों, जैसे ही बारिश थम रही है, धूप निकल रही है, तो गर्मी उसी तरह से लग रही है, और पता ही नहीं चल रहा कि कहीं बारिश हुई भी है या नहीं हुई, तो ऐसा ही चल रहा है फिलहाल के लिए। तो मौसम विभाग ने 12 से 16 जून तक, यानी कि आज से 16 जून तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान जारी किया है। आज की बात करें तो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, गरज, चमक, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, और 13 को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। तो इसी तरह से दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे सिचुएशंस बदलती जाती हैं, उसी तरह से मौसम का मिजाज भी कहीं ना कहीं बदलता जाता है, और हमें उसी मिजाज के साथ ढलना होता है। तो बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय है प्रादेशिक समाचारों का। दोस्तों बातचीत और गीत संगीत के साथ साथ जानकारियां भी बेहद जरूरी हैं हम सभी के लिए, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ होगी मुलाकात आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की।
1: विकास और जन कल्याण के रखा गया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुँचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज समर फेस्टिवल के तहत हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड के लिए पंजीकरण लिंक शिमला के उपायुक्त की फेसबुक पेज पर जारी होगा। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉ पॉइंट ऑकलैंड टनल को रखा गया है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नज़ारा दिखाया जाएगा। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बबल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। यह सेवा बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गाँवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, JBT और TGT संस्कृत विषयों को परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सिरमौर जिला के नाहन की ऐतिहासिक विला राउंड सहरगाह को जल्द ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए विकसित किया जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि सहरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
3: नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ सहरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक सहरगाह बिलाराम का सौंदर्यकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि यहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि बिलाराम में जल्द ही ओपन जिम स्थापित की जाएगी जिससे युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूरी सहरगाह में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी जिससे शाम के समय सहरगाह आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
1: प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।
4: 13 मार्च और जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल स्पीति किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडी मिश्रित हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में है जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री की गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
1: कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विच यार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पीएम मोदी से बोले सुक्खू, आरडीजी की भरपाई के लिए पहाड़ी राज्यों को 50,000 करोड़ दे केंद्र। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुक्खू ने हिमाचल के लिए मांगी 50,000 करोड़ रुपए की मदद। दैनिक भास्कर लिखता है, नीति आयोग की बैठक में उठे आरडीजी और हिमाचल हितों के प्रमुख मुद्दे। प्रदेश के सरकारी भवनों का होगा नियमित सुरक्षा ऑडिट, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, स्कूलों, अस्पतालों समेत सभी महत्वपूर्ण भवनों की होगी जांच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनगणना कार्यक्रम में करेंगे शिरकत।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 50 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की, वेलकम कर रहे हैं एक नए पल की। जी दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी हमेशा खास बातों पे ध्यान जरूर जाना चाहिए। बाकी तो हम आती जाती सारी बातों को सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, और कहा भी जाता है कि कड़वे शब्द और पैसों का घमंड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक हंसते खेलते परिवार को एक छोटे से पल में बिखेर कर रख देती हैं, तोड़ कर रख देती हैं, उजाड़ कर रख देती हैं। देखिए कितनी ताकत है कड़वे शब्दों में और पैसों के घमंड में। तो आज की डेट में क्या लगता है दोस्तों आपको, ये पैसों का घमंड हर किसी इंसान में होता है या फिर किसी किसी इंसान में है? सोचने वाली बात है। अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय, क्योंकि अक्सर कुछ सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, कुछ हालात हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं कि हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं, कुछ बातें हमें चुभ जाती हैं और हम अपनी आवाज को ऊंचा कर देते हैं, जिसकी वजह से न जाने हम अपनी इमेज को ही नीचे गिरा देते हैं या सामने वाले व्यक्ति के स्तर तक हम खुद को पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं ना कि फिर उनमें और हम में फर्क ही क्या रह गया। तो अपनी आवाज को ऊंचा बनाने के बजाय शायद हमें अपने शब्दों को वजनदार बनाना चाहिए, शायद उसमें कुछ खास बात बन जाए। जी दोस्तों, क्योंकि फसल जो है वो बारिश से उगती है, ना कि बाढ़ से उगती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और कहते हैं कि दौलत के घमंड में अपनी जुबान मत बिगाड़िए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और कर्मों के, कहते हैं ना, हिसाब जो है वो यही होना है, कहीं और नहीं होना है। तो हमें यहीं रहना है और वो हिसाब हमें यहीं करना है। तो अहंकार में बोले गए शब्द

अक्सर रिश्ता तोड़ देते हैं और मर्यादा में कहे गए बोल बिगड़ी बात बना देते हैं। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और एंजॉय करना है कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से गीत को आप सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कोई बात नहीं, हम एक और प्यारा सा गीत जो है वो ज़रूर एंजॉय करेंगे, उसके बाद अपनी इस बहुत ही खास बातचीत पे वापस आएंगे, आप सभी के साथ जुड़ेंगे।

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, अक्सर हम बात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें, क्योंकि हम तो अक्सर हर बात पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि हमें अपने आसपास जो है ना, पड़ोसियों के दुश्मनों के घर में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ पता होता है। लेकिन जो जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ हमें बोलना चाहिए, जहाँ गलत हो रहा हो उसके प्रति अगर हमें आवाज़ उठाने की बात आए तो हम नहीं उठा पाते। हम कहते हैं हम इंसान हैं, क्या वाकई में हम इंसानों में वो इंसानियत है? क्या लगता है दोस्तों आपको, आज के समय में जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, जिस तरह से हम इस भाग दौड़ में भाग रहे हैं एक दूसरे को देखकर, हम ये जानते हैं कि हमारी खुशी कहाँ है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं, लेकिन नहीं, हम उन सब बातों को छोड़कर हमारे साथ वाले या हमारे जो कुछ खास हैं वो क्या कर रहे हैं, उसी के चलते हम बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स क्या करते हैं अक्सर, कि उनके अगर फ्रेंड्स के बच्चे साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं तो बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको भी उसी स्ट्रीम में जाना है, भले ही बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ना हो। ये जो आज के समय में क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, खास करके लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि बड़ी, अगर हम बेटियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि शायद उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, शायद उनका पहनावा अच्छा नहीं है। लेकिन जो 13, 14, 15 या उससे भी कम उम्र की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, क्या उनका भी पहनावा सही नहीं है? क्या उनका भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है? उनके पहनावे में दिक्कत है या हमारी सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है? तो ये जो बात है ना दोस्तों, ये हमारे लिए सोचना शायद बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरों के अकॉर्डिंग हम अपनी जिंदगी को ढालना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी सोच में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम नहीं जानते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होता है, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी, तो वहां हम हेल्प करने के बजाय सबसे पहले वीडियो बनाना जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं उस गलत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आपका दायित्व क्या होना चाहिए कि किसी इंसान की जान चली जाए, आप वीडियो बना लें, आप वीडियो अपलोड कर लें, उसके बाद उसकी हेल्प करें? लोग सोचते हैं कि हम इसमें, इस चक्कर में पड़ेंगे तो शायद हम पे भी कीचड़ उछलेगा या हम पे भी कुछ बातें आ जाएंगी, शायद हम वे वजह ही लड़ाई का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन आपकी एक छोटी सी इस सोच की वजह से शायद किसी की जान चली जाए। तभी लोगों को एक कहते शय मिलती है गलत करने का। दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, लेकिन हम जो हैं आज भी आवाज़ नहीं उठा पाते। ज़रूर इस पे बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में और किस तरह से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने घटित हो रही हैं घटनाएँ, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आँखें बंद करके एक इंसान होने के नाते उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और गलत होने दे रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चियों के साथ हो, चाहे वो लड़कों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, क्योंकि आज गलत से कोई भी बचा नहीं है। जहां हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तभी तो हर कोई गलत का शिकार होते जा रहा है। तो दोस्तों, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर आप इस पे विचार करिए। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

तो सही 91.2 MHz पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ढेर सारी बातें भी आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और मनोरंजन भी, और साथ ही साथ जरूरी है तो क्या है, कुछ खास जानकारियां। फिर किसी बात की कमी जो है वो ना तो कार्यक्रम में रहेगी और ना ही आपकी जिंदगी में। बिल्कुल दोस्तों, मनोरंजन के साथ साथ हर चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक खास जानकारी की ओर। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने CCS नियम में संशोधन कर दिया है और इसके तहत स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा, जबकि पुराने प्रावधानों के तहत स्टडी लीव ले चुके कर्मचारियों को भी सरकार संशोधित नियमों के अनुसार वेतन की बकाया राशि का भुगतान करेगी। अहम है कि प्रदेश में पहले स्टडी लीव लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। वहीं राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया। स्टडी लीव पर रहने वाले कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान 100% वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही खास ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जो कि आप सभी सुनते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने अपने रेडियो सेट से। और अपनी इस खास सफर के साथ अपने दिन को भी, यानी कि दिन की शुरुआत को भी प्यारा और खूबसूरत बनाते हैं इन कुछ खास बातों के साथ। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी

बातें ना बहुत खास होती हैं। अक्सर हम यही कहते हैं, अगर हमें कोई बोले ना तो हम यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे ज्ञान देकर चले जाते हैं, उपदेश देकर चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में आ ही जाते हैं कि वो बातें हमारे दिमाग में ना घूमती हैं। न जाने कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं अगर गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं तो वो बातें याद करके शायद रुक जाएं। हमें ऐसा लगे कि शायद वो बात हमारे लिए सही थी या हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो फिट हो रही है। दोस्तों, ये बातें हमारी ज़िंदगी से रिलेट ज़रूर करती हैं, बस थोड़ा सा अगर हम अपनी ज़िंदगी को गहराई से समझने की कोशिश करें। सुबह से लेकर शाम तक एक सवाल खुद से करके देखिए कि इतने समय में आप अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या कभी सोचते हैं? अगर सोचते भी हैं तो कितने समय के लिए सोचते हैं? अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में। कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी अच्छाइयों को ध्यान में देते हैं, और कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कमियों का ध्यान देते हैं। लेकिन हमें हर एक बात को साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी होता है जी। दोस्तों, जब तक हम इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, और अक्सर हमारी ज़िंदगी में जो है ना, हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि हम अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। जैसा हम चाहें वैसी हमारी ज़िंदगी हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? कोई बात नहीं, ये सवाल आप सभी के लिए। सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि जो चाहते हैं वो होना लाजमी है या हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात मैंने और कही थी दोस्तों, कि जो ये आज के समय में क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका जवाब आप सभी को क्या मिला? कहाँ तक आपकी सोच पहुंची कि क्या वाकई में हमारी सोच में वो कमी है, या फिर लोगों के पहनावे में, लोगों के नज़रिए में? नज़रिया और सोच, ये मुझे लगता है यही मायने रखते हैं। बाकी तो खैर आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप सभी। लेकिन इन बातों पे गौर करना। दोस्तों, हम इंसानियत की बात करते हैं। मैं एक इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि आज के समय में पहले लोगों के पास भले ही पैसे कम होते थे, लेकिन दिल जो होता था बहुत बड़ा होता था। लेकिन अब जिस तरह से ये सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, ये पैसों का रौब जो है वो बड़ा है, रुतबा बड़ा है, उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल छोटे हो गए हैं? लोगों का जो अपनापन है वो कहीं खो सा गया है? अगर लगता है आपको ऐसा, तो ज़रूर आप इस पे विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि लोग, पता है क्या, आजकल जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बेचारे बसेस में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि घर वाले अक्सर साथ में नहीं जा पाते, तो वो अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो किसी को शायद कोई प्रॉब्लम हो, टांग में दर्द हो या पीठ में दर्द हो या कोई बीमार है ना, इस तरह से, या कोई बच्चे वाली लेडी अगर बस में चढ़ जाए, तो हम कहते हैं हम इंसान हैं और हम में इंसानियत है। तो कभी आपने बस में एक ऐसे इंसान को अपनी इंसानियत दिखाई है? मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे बहुत ऐसे शर्म सी महसूस होती है लोगों को देखकर कि लोग अच्छे खासे, मतलब हम सही हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं, हम बैठ भी सकते हैं, हम उनको हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सही सलामत होने के बावजूद हम ऐसे लोगों की, मतलब कि जो बेचारे मजबूर होते हैं या किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो हम उनकी हेल्प तक करने में इंसानियत नहीं दिखा पाते, तो हम किस इंसानियत की बात करते हैं? तो ज़रूर इस पे गौर कीजिए दोस्तों। बड़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास इन बातों को थोड़ा सा नज़र दौड़ा के देखिए। हम में इतनी सी इंसानियत नहीं कि हम किसी को एक सीट तक दे सकें, क्योंकि हमारा क्या कहना होता है कि हमने पैसे दिए हैं, हमने टिकट ली है। भाई, टिकट सभी लेते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। खैर दोस्तों, ये मेरा ही सोच का नज़रिया है, बाकी आप सभी की क्या सोच है, आप सभी के क्या विचार हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सही सलामत हैं, हम सही से मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं, भगवान ने हमें उस काबिल बनाया है, तो ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प करना, कर्म जो है वो यही नज़र आते हैं, यही दिखाई देते हैं। कोई बाहर जाके ज़्यादा ही हम वो करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अपना अपना हिसाब, अपना अपना नज़रिया। तो दोस्तों, ये तो ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें हैं और ये बहुत ही ख़ास हैं और ज़रूर इस पे सोच विचार करना चाहिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों, 12 जून 2026 आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। अब क्यों खास है दोस्तों, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा उन इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर उस गहराई में जाना होगा, उस सच्चाई में जाना होगा, जिससे कि शायद हम थोड़ा सा अपने आप को प्रेरित कर सकें, मोटिवेट कर सकें कुछ खास बातों की और जिंदगी से जुड़ी हो, चाहे फिर हमारे आसपास किसी भी चीज से जुड़ी हो, बात तो बात होती है। तो यही खासियत और अहमियत समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखें तो आज के दिन आप सभी मना रहे हैं बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 2026। तो है ना कितना खास दिन, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। जी दोस्तों, जो बच्चों से काम कराया जाता है मजबूरियों के चलते, या फिर उन्हें पढ़ाई से दूर किया जाता है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, तो उनका भी अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को एक खुली सांस के साथ जी सकें, आजादी के साथ। क्योंकि हमारे देश में या कहीं भी दोस्तों, अब समाज एक तरह से आज़ादी के साथ जो है हम जीते हैं, आज़ादी से सांस लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जितनी सुविधाएं होती हैं वो हर किसी को नहीं मिल पाती या हर किसी तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ लोग सुविधाओं से अनजान रह जाते हैं या दूर रह जाते हैं, ये यूं कहें कि बच्चों को जो है घर की आजीविका चलाने के लिए कई बार उन्हें मजबूर किया जाता है काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो अगर हमारे आसपास कुछ ऐसी बातें हो जो कि हम देखें, जहां बच्चों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो वो नहीं आवाज उठा पाते। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हम इंसान हैं तो इंसान होने के नाते एक इंसान दूसरे इंसान के दुश्मन हम कैसे हो सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को एक अलग पहचान, एक नई पहचान देनी है, तो हमें ये सारे गिले शिकवे जो कि हम आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जहाँ हमें एकजुट होने की ज़रूरत होती है, जहाँ हमें एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत होती है, साथ देने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम आपस में ही बस एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों के चलते हम कहीं ना कहीं समाज में, देश में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 2026 का विषय, हर दिन की जिस तरह से खासियत होती है, उसी तरह से जो भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उसका कोई विषय होता है, कोई स्पेशल थीम रहती है। तो आज के दिन की हम बात करें तो बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक कार्य, तो ये है आज का थीम। ये विषय बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु सरकारों, समुदायों और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी पर बल देता है। साथ ही ये बाल श्रम जो है उस पर निर्भरता कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और वयस्कों के लिए सम्मानजनक कार्य अवसरों के महत्व को भी उजागर करता है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे अवसर होते हैं हमारे लिए बहुत खास होते हैं। बच्चों को सोचिए, जब वो स्कूल में जाते हैं तो उन्हें कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनके टैलेंट को निखारने के लिए, उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। लेकिन अक्सर हम एक दूसरे को देखकर अपनी स्किल्स को अनदेखा करते हैं। हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं अगर बात करूं कि मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन समाज के नज़रिए से देखा जाए तो ये गीत संगीत में हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है। और फिर वहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर बन जाता है
कि हम समाज में क्या किसी को इमेज दिखाएंगे या क्या पहचान रह जाएगी हमारी, कि अगर आप म्यूजिक में, सिंगिंग में जो है आगे बढ़ रहे हैं स्टडी को छोड़कर। दोस्तों बच्चे स्टडी छोड़ते नहीं हैं, वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं को समझें, आप उनके शौक के साथ आगे बढ़ें, वो अपने उस स्किल को भी बढ़ाएंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको उनके साथ कॉपरेट करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा उन्हें समय दीजिए, जो कि आज के समय में पेरेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है तो घर पे समय मिल नहीं पाता, 9 से 5 वो अपने काम में बिजी, शाम को आके घर के काम, खाना और बच्चे अनदेखे नज़रअंदाज। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं किसकी जो है इनकी ये संगत में चले गए हैं और न जाने किसने इनको क्या क्या सिखा दिया। जब आपको सिखाने का समय था, जब आपके पास समय है, तो आप उस समय की कद्र क्यों नहीं कर रहे? आप उस समय की कद्र कीजिए, आपके बच्चे आपकी बातों के अकॉर्डिंग अपनी राय भी रखेंगे और उसमें से निकाल के फिर वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बातें समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए और इस दिन को खास बनाना, इस दिन की अहमियत को समझना, सिर्फ और सिर्फ बातों तक नहीं, असल जिंदगी में इसको लेकर आना, तभी हम कह सकते हैं कि हम वाकई में जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो कार्यक्रम में सपोर्ट चाहिए एक प्यारे से गीत का, तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ ही हम चलेंगे एक और छोटे से ब्रेक की और। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया गैम्बलर मूवी से। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं 91.2 MHz पर। दोस्तों, बहुत गहरी बात है कि कुछ जख्मों को मौन के साथ अपनाना होता है, हर दर्द को लफ्जों में बताना नहीं होता। कुछ घाव वक्त की धूप में खुद ही भर जाते हैं, उन्हें बार बार छूकर जगाना नहीं होता। जो पीड़ा रूह की तहों में उतर जाए, कभी उसे हर महफिल में सुनाना नहीं होता। मौन भी एक मरहम है, सब्र भी एक दवा है, हर आंसू को आंखों में बहाना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म हमें मजबूत बनना सिखाते हैं, इसलिए हर दर्द से भाग जाना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, दर्द हमें जिंदगी का सबक सिखाते हैं, ना कि हमें भगाना सिखाते हैं। क्योंकि जिंदगी में अगर एक बार आप उस दर्द से भाग गए तो कितने दर्दों से भागेंगे, क्योंकि जिंदगी में तो खुशी और गम दोनों का ही मेल जोल है और उसी से जिंदगी प्यारी भी बनती है। क्योंकि जब तक जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, हम जिंदगी को जीना कैसे सीखेंगे? सबसे बड़ी बात, हम लोगों में फर्क करना कैसे सीखेंगे? लोगों को पहचानेंगे कैसे कि कौन अपना है और कौन पराया? तो ये दर्द हमारी जिंदगी का पार्ट है, हमारी जिंदगी के एक पहलू की तरह है। तो इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि इसके साथ जिंदगी में आगे की ओर बढ़ना है। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ना है और एंजॉय करना है कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से जानकारियों की ओर, क्योंकि ये सफर ही जानकारियों से भरा है आप सभी के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक और खास, बेहद खास जानकारी। दोस्तों, नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच के क्षेत्र में हिमाचल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विकसित भारत विल्डाथॉन 2025 में प्रदेश के 3 विद्यालयों, देश के शीर्ष 100 राज्य स्तरीय विजेता विद्यालयों में शामिल हुए, जबकि 20 अन्य विद्यालयों ने जिला स्तरीय विजेताओं में स्थान बनाकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विजेता विद्यालयों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विकसित भारत विल्डाथॉन 2025 में प्रदेश के विद्यालयों की उत्कृष्ट सफलता पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि हासिल जो है वो हिमाचल में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। जी दोस्तों, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हर एक फील्ड में जो है, हर एक स्किल में आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल और साथ ही साथ शिक्षकों का तो रहता ही है, क्योंकि ज़्यादातर समय तो खैर वो एक तरह से होते शिक्षक के साथ ही हैं, लेकिन हाँ पेरेंट्स के साथ भी होते हैं और पेरेंट्स का उनकी भावनाओं को समझकर उनका साथ देना, उन्हें सपोर्ट करना। और आज के इस खास दिन पे आप वैसे भी बहुत ही खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर डे। तो दोस्तों, बच्चों से काम लेना

मजदूरी कराना एक तरह से इलीगल माना जाता है, जब कि उनकी पढ़ाई करने की उम्र है। तो ऐसे में हमें ये बातें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, और अगर हमें लगे कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो हमें ज़रूर उस पे आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो है ना, मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है एक न्यूज़, जो कि 15 साल की बच्ची के साथ एक डॉक्टर ने एक मिसबिहेव कह सकते हैं, या उसके साथ जो है वो गलत किया। तो उस पर बहुत एक वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और एक महिला जो कि उस समय जो मतलब कि ड्यूटी पे ही थे, और उन्होंने उस पर सवाल उठाए, उस पर काम किया, उसी के चलते बहुत सारी बातें आपको सामने देखने को मिल रही होंगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस पे आपको क्या लगता है कि जब भी बच्चियों के साथ गलत होता है, एक उद्देश्य मेरा ये है आप सभी से कहने का, कि जब बच्चियों के साथ गलत होता है या हो रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, फिर भी हम चुप क्यों हैं? क्योंकि लोगों को बढ़ावा मिलता है। जब तक हम चुप रहेंगे, उन लोगों को पता है जो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक दिन के लिए बहुत गुस्से में आएंगे, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, फिर हमें जो है वो या तो अगर वो गवर्नमेंट ड्यूटी के अंडर हैं तो उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा, या उन्हें जेल की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। दो तीन दिन की बात है या एक महीने की बात है, उसके बाद तो फिर वो अपनी आराम से ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, या फिर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जो है उसी क्राइम को जो है वो अंजाम देते हैं उसी तरह के। तो जब तक इनके खिलाफ, जो कि ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए, तब तक ऐसा नहीं लगता कि ये लोग सुधरेंगे, है ना? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि ये डर एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी के साथ ऐसा होगा नहीं, तब तक लोग नहीं सोचेंगे। एक ऐसा डर कि इंसान किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। ये नहीं कि कुछ समय की सज़ा मिलेगी, उसके बाद फिर हम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होंगे। तो इसी तरह से ये क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इसे हम वाकई में रोकना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ चलना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम वहाँ भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, और वहाँ एक बच्ची के मुद्दे को हटा के कुछ और ही बातें जो है वो सामने आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, कभी भी किसी के दुख को हम समझें तो उसे खुद से ही रिलेट किया जाना चाहिए, तभी हम उस दुख को असल में समझ पाएंगे। बच्चे देश के बच्चे हों, घर के बच्चे हों, बच्चे बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक गरीब घर की लड़की थी तो उसके लिए कोई आवाज़, और बिन माँ की बच्ची तो उसके लिए कोई आवाज़ ना उठाए, ये तो बहुत गलत बात है। तो हम लोगों की इंसानियत कहाँ है, जिस इंसानियत की हम बात करते हैं? तो ज़रूर इस बात पे सोचिए, विचारिए। हरियाणा की न्यूज़ है में भी ये तो बहुत हाईलाइटेड है इस टाइम, अगर इसको हम सोशल मीडिया पे देखें। खैर, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी वादे के साथ कि फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए इंतजार के साथ अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
8: Oh no!
6: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया

0: ये कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
6: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी, हर बार आप मुलाकात करते हैं हमारे साथ और ढेर सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आज के समय में जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बदल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो हमें ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहती है, ज्यादा हमें कदम जो है सोच समझ कर आगे चलने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, और आजकल का समय ऐसा है रुचिका, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, चाहे निजी जिंदगी में भी बाहर भी। हम व्यक्तिगत तौर पे तो हम काम कर ही रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, किसी कोई बिजनेस में उलझा है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा हर एक व्यक्ति आजकल सोचता है कि काम करे, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। इवन हमारे बच्चे तक जो है वो भी जैसे ही उम्र बढ़ती है तो वो भी सोचते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लें। तो आजकल हर किसी ने अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त कर रखा हुआ है।
0: बिल्कुल, अब जैसे ही मतलब कि हम क्यों भाग रहे हैं इस दुनिया में इस टाइम में पैसों के पीछे, ताकि हमारी जिंदगी जो है एक सही ट्रैक पर चले और हम भी एक बिना टेंशन के बिना किसी उलझन के जो है जिंदगी में आगे बढ़े।
1: बिल्कुल, हर एक चाहता है व्यक्ति की उसका जीवन अच्छा हो, उसके पास हर एक प्रकार की सुख सुविधा हो, आरामदायक जिंदगी जीना। लेकिन मुझे लगता है रुचिका, जितनी जितनी हम सुविधाएं एकत्रित करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम अपने आप को अपनी जिंदगी को बदलते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा उलझने भी हमारे जीवन में आती ही रहती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे आस पास जो ये कहे कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
0: बिल्कुल, मैंने पहले कहा ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे की ओर वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स भी हमें बढ़ा रही हैं आगे की ओर।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसे कि अभी आपने कहा ना, पार्ट टाइम जॉब भी हम करते हैं, सच में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से भी अगर पॉसिबल है तो यहाँ से भी हमें फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, वहाँ से भी हो जाए, ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है कुछ हद तक सही से बनी रहे और चली रहे। पर रुमा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि हम घर पे भी काम कर रहे हैं, फिर अलग से हम वर्क प्रेशर जो है बाहर भी अलग अलग जगह से ले रहे हैं, मतलब एक जगह भी कर रहे हैं, दूसरी जगह भी अगर पॉसिबल है तो हम वहाँ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पार्ट टाइम जॉब्स हमारे लिए खैर होती थोड़ी खतरनाक वाली है, क्योंकि इसमें सतर्कता बहुत जरूरी होती है। पर खासकर हम आज जो बात करने वाले हैं, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जॉब से रिलेटेड, तो मुझे ये बताइए कि जब हम काम करते हैं तो घर का भी हमारा अलग माहौल होता है,
1: बिल्कुल,
0: ऑफिस का हमारा अलग माहौल होता है, तो ऐसे में हमें, आपको क्या लगता है कि ऑफिस और मतलब एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ, उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, या फिर किस तरह से हमें उस चीज को मैनेज करना चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसे में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं, या फिर ये अलग अलग रहें, मतलब किस तरीके से?
1: देखो रुचिका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पहले तो भेद करना बहुत जरूरी है। और पर्सनल लाइफ हमारी वो है जो हम जी रहे हैं रोजमर्रा में, सुबह उठ के शाम तक जो भी हमारी दिनचर्या रहती है, हमने पढ़ाई करनी है, मेरा कुछ जीवन का लक्ष्य है, मुझे उसको अचीव करना है, मेरे उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे एफर्ट्स करने हैं। इसी तरह से एक मेरा अपना व्यक्तित्व है, मुझे इसको निखारने के लिए, मुझे अपने आप को संवारने के लिए, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो, वो मुझे जो भी एफर्ट्स कर रही हूँ वो मेरे व्यक्तिगत हैं, जो सिर्फ मेरे भले के लिए है, या उनसे जो भी मैं कर रही हूँ अपने लिए। एक प्रोफेशनल लाइफ वो है तो प्रोफेशनल लाइफ भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई, क्योंकि वहाँ पे भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का ना एक सीमित समय होता है, व्यक्तिगत जीवन के लिए सीमित समय नहीं है। 24 घंटे हम अपने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए जी रहे हैं, चाहे वो काम करके जी रहे हैं या कुछ भी करके, नौकरी है जो भी है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब व्यक्ति जाता है तो उसके काम का कुछ जो समय है वो निश्चित होता है, उसको 10 से 5 या 9 से 4 जो भी उसका काम का शेड्यूल है, वहाँ पे उसको एक फिक्स काम करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी हो या कुछ भी। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, ये हमारे काम के साथ साथ मनोरंजन का भी एक बहुत बढ़िया साधन है। तो यहाँ पे जो

0: हमारे काम की जरूरतें हैं वो अलग हैं, जो हमारी निजी जरूरतें हैं वो अलग हैं। जब हम इन सब चीजों को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे जीवन में ना उथल पुथल मच जाती है, और इसलिए हमें व्यक्तिगत और जो हमारा प्रोफेशनल जीवन है इसको हमें जरूर एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। कहते हैं ना, जब हम कई बार घर में काम से थके हुए जाते हैं तो घर में भी हम अपने झुंझलाहट अपने बच्चों पे या अपने काम पे पटक पटक के बर्तन रखते हैं। कई बार पूरे दिन की जो
1: मिड़ास होती
0: है तो हम किचन में भी हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, हम खाना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, या फिर कोई हमसे बात करने की कोशिश करता है तो हम झुंझला के उनको बातों के जवाब देते हैं। तो इसका मतलब यही जाता है कि हमारा जो काम का प्रेशर था, जो दिन भर हम अपने काम पे बाहर रहे, वो अपने साथ हम घर ले गए, और घर में जाकर भी हमने वो सारी खिचड़ी सी बना दी और हमारे जीवन में थोड़ी सी जो शांति थी वो कुछ समय के लिए वो डिस्टर्ब हो जाती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा रुमा जी आपने, इच्छाएं हर किसी की होती हैं और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, पर साथ ही जैसे आज हम बात कर रहे हैं, खैर हम अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए या इकट्ठे रखना चाहिए, हमारी जिंदगी का बैलेंस जो है किस तरह से चलना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, क्योंकि आजकल तो हर कोई वर्किंग है और हर किसी की पर्सनल लाइफ भी है तो प्रोफेशनल लाइफ भी है,
0: जी जी,
1: तो उसमें कैसे बैलेंस करना या क्यों हमारे लिए बैलेंस करना जरूरी है, क्या उनकी वजह से कोई दिक्कतें आती हैं जब एक साथ हम उनको कर देते हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका एक अलग सा होता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जितना हो सके हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आज हम उसी पे बातचीत करने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बातचीत है
0: जी,
1: तो शुरुआत करने से पहले बातचीत की, उससे पहले हम
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा मनोरंजन,
0: बातचीत को हल्का फुल्का बनाने के लिए मनोरंजन का सहारा अगर हम ले लेंगे तो देखिए चुटकियों में ये बात हमारी पूरी हो जाएगी और आखिर में हमें बोलना पड़ेगा कि अब समय बचा ही नहीं है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
1: जी, तो दोस्तों इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार दोस्तों हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ और भरने को तैयार हैं मेरे हौसलों की उड़ान। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को आगे।
1: जी, और आपके हौसले आपको कहाँ तक लेकर पहुँचे हैं ये आप ही जानते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उन्हें पंख देने की, बाकी उड़ान आपने खुद भरनी है।
0: बिल्कुल, और जब हम हिम्मत और हौसले के साथ अपनी उड़ान को भरेंगे तो जाहिर सी बात है रुचिका हम किसी मुकाम पर भी जरूर पहुँचेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दोस्तों के साथ उनके जीवन में चल रही छोटी छोटी मुश्किलों को हल्का करने की कोशिश करें और अपने पंखों को परवाज देते हुए आसमान को छूने की कोशिश करें।
1: जी बिल्कुल, तो आइए फिलहाल हम अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपनी इस बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रूमा जी आज के कार्यक्रम में कि कैसे एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखा जाना चाहिए और क्यों रखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये अपने दोस्तों को भी बताना चाहूंगी, जैसे भी हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में अगर हम काम कर होते हैं तो होता है ना कि जैसे पूरा दिन और ज्यादा जो समय है हम ऑफिस में ही बिताते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि नहीं आपका पूरा समय ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में फ्रेंड्स के साथ जाता है, तो वैसा ही हमारा अपने कलीग्स के साथ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो एक पर्सन का जो दूसरा घर होता है, बोलते दूसरी फैमिली ऑफिस वाली होती है।
0: बिल्कुल, कार्यस्थल भी हमारा अपना दूसरा ही परिवार होता है और यहाँ पर भी कई तरह की परेशानियाँ, कई तरह की पेचीदगियाँ हमारे काम में आ जाती हैं, जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है और हमारी कोशिश रहती है जो भी हमें काम सौंपा गया है या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक व्यवस्था के साथ हम उस काम को पूरी लगन के साथ खत्म करें और फिर अपने घर में जाएं। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो रुचिका अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने काम की जो परेशानी होती है उसको भी अपने साथ घर ले जाते हैं, और जब हम घर से अपने कार्यस्थल पे आते हैं तो अपनी बहुत सारी घर की परेशानियां वहां पे ले आते हैं, और उसका अंजाम ये होता है कि हमारा जो तालमेल हमारे काम के साथ है वो नहीं बन पाता है, ना तो हम अपने परिवार के साथ सही से रह पाते हैं और ना ही अपने काम के साथ सही से जुड़ाव कर रख पाते हैं। और ऐसे में क्या अंजाम होता है वो आपको भी पता है, एक मानसिक तनाव जो है वो हमें घेर लेता है और काम की जो हम उम्मीद लेके आते हैं ना, सुबह बिल्कुल फ्रेश होके आते हैं, आज हमने ये टारगेट है अपने इस टारगेट को पूरा करके जाना है, ये काम करके जाना है, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कोई ना कोई हमारे घर की निजी परेशानी हमारे काम के दौरान हमारे मस्तिष्क में जो है व्यवधान डाल देती है और हम फिर उस और सोचने लग जाते हैं। और जब हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं तो जो कार्य का जो काम है कार्यस्थल का, ना तो बोर्ड सही ढंग से हो पाता है और ना ही हमारी घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सही से निर्वहन हो पाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, अक्सर हम क्या करते हैं घर में कोई खिटपिट चल रही है, घर में कोई लड़ाई चल रही है तो दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसे ही लेके कहते हैं ना कि जब हम ऑफिस के अंदर गेट के अंदर एंटर करते हैं तो उन परेशानियों को उधर ही रख देना चाहिए, पर हम क्या करते हैं हम उन्हें दिमाग में भरते रहते हैं और पूरा दिन हम काम भी कर रहे हैं तो वो दिमाग में बातें चल रही कि यार शाम को घर जाऊंगा तो वही लड़ाई झगड़े वही बातें फिर से रिपीट होंगी। खैर सोचना बनता भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे हैं मतलब ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उस समय उन बातों को ना सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर।
0: रुचिका होना तो यही चाहिए कि हम अपने काम के साथ अपने घरेलू मुद्दों को या जो भी हमारे मानसिक तनाव चल रहे हैं उनको साझा ना करें, लेकिन एक मानवीय स्वभाव है, हम स्वभाव के साथ जो हमारी जुड़ाव होता है उसके अनुसार हम चीजों को अलग नहीं कर पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा देखो काम तो मेरा ही है, चाहे मैं घर में कर रही हूँ चाहे ऑफिस में कर रही हूँ, काम तो मेरा है, तो इसलिए इन चीजों को सेपरेट कैसे करना है ये बहुत मुश्किल होता है, इन चीजों को व्यवस्थित कैसे करना है ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हम लोगों को खुद को ही थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा सलीका दिखा के इन चीजों को व्यवस्थित करके अपने प्रोफेशनल जीवन को और अपने व्यक्तिगत जीवन को जो है वो अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जब चीजें जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचता ही है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी इसका नुकसान होता है और साथ ही साथ जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन हम फिर पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति काम के लिए भी निकम्मा है और घरेलू मुद्दों को संभालने में भी निकम्मा है। और इसका रीजन यही रहता है क्योंकि देखिए हम सब सक्षम है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमारी सामर्थ्य ही थी कि हमने उसको शुरू किया या हम वो कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन बीच में क्या आ गई, हमारी घरेलू परेशानियां आ गई, हमारे व्यक्तिगत मुद्दे आ गए जिन्होंने इन चीजों से हमें भटका दिया और हमने व्यक्तिगत जीवन को अपने पेशेवर जीवन में उलझा के रख दिया
1: जी। बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। और वैसे तो हमने शुरुआत में कहा था कि जो ऑफिस हमारी टीम होती है, जो भी कलीग्स हमारे होते हैं या ऑफिस का माहौल होता है, वो हमारा दूसरा घर होता है। होना चाहिए, जरूर मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसे अपना घर नहीं मानेंगे तब तक हम उतने सीरियस नहीं होते हैं काम को लेकर भी और उन चीजों को लेकर। पर एक बात है कि घर उसे मानना जरूर है, पर उतने पर्सनल रिलेशन जो है आपको मुझे लगता है कि ऑफिस वर्क में नहीं लेके आने हैं, क्योंकि जब आप पर्सनल रिलेशन जब ऑफिस में लेके आ जाते हैं तो फिर आपकी वजह से पूरा स्टाफ जो है वो सफर करता है।
0: देखिए जैसे घर में भी वही बात है ना, घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो घर के पूरे सदस्य परेशान हो जाते हैं। उसी तरह अगर ऑफिस में एक भी व्यक्ति का बर्ताव अगर खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव सारे स्टाफ पर पड़ता है, सबके काम पर पड़ता है, एक दूसरे के साथ। जो हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो जब काम के दौरान इस तरह के बातें सामने आती हैं तो हमारा अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करने को मन नहीं
1: करता, तरीका बदल जाता है,
0: उनका तरीका बदल जाता है, हमें सहयोग की जो भावना है वो कम हो जाती है। अक्सर मैंने कई बार कार्यालयों में ये कहते सुना है, घर में बीवी से झगड़ा करके आया तो यहाँ पे आके अपना
1: भड़ास निकाल रहा है।
0: तो देखिए इसका सहकर्मियों के ऊपर भी कितना प्रभाव
1: पड़ता है। बिल्कुल,
0: तो इन सब चीजों से हमें अलग हटके अपने कुछ नियम बना लेने चाहिए ताकि हमारा जो बाहर का काम और घर का काम मिक्स ना हो जाए, हमारे घर का काम हमारे बाहर के काम को सप्रेस ना करे और बाहर का जो काम है वो हमारी घरेलू चिंताओं में ना हमें डाल दे।
1: बिल्कुल। और रुमा जी जैसे कि आपने कहा ना कि जब हम घर में लड़के आते हैं, अब मैं आपसे ही आपके वो एग्जांपल लेके बोलती हूँ कि जैसे ऑफिस में हम एक साथ काम कर रहे हैं तो जैसे कि आप घर से आए, आपको हो सकता है घर पे लड़ाई हुई होगी, बच्चों के साथ हुई है, जैसे भी हुई है, तो जैसे ही मैंने आपको आगे से आके विश किया कि नहीं गुड मॉर्निंग मैम, तो आगे से आपने अगर मेरे को गुस्से से बोल दिया या ऐसे दिखा दी कि हाँ गुस्सा कहीं और चढ़ा है और आप तो मेरे को वैसा करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगे।
0: देखिए और इससे पूरे दिन का आप गुड मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं और जो मॉर्निंग गुड की बजाय बैड
1: हो जाते
0: हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बर्ताव के कारण सारे स्टाफ का जो माहौल है वो खराब हो जाता है
1: वो भी। और मैं दोबारा फिर आपको विश करने से पहले 100 बार सोचूंगी कि आगे से आपका रिएक्शन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उस दिन तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है।
0: बिल्कुल। और जब हमारी छोटी सी संबंधों में जब तनाव आता है ना
1: जी,
0: तो फिर ये तनाव हमारे काम को भी प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है रुचिका, जैसे हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन और निजी जीवन को रखने की, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स करनी पड़ेंगी, अपने काम को अधिमान देना पड़ेगा कि कौन सा काम मेरे लिए पहले है, कौन सा काम मेरे लिए ऐसा है जिसको मैं बाद में भी काम को टाल सकती हूँ या बाद में कर सकती हूँ। तो इस तरह की हमें अगर इन चीजों से बचना है तो हम अपनी प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन में जो है वो संतुलन बना के चल सकते हैं और जो काम का बोझ और जो घरेलू चिंताएं हैं वो ये जब मिक्स नहीं होंगी तो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व हमारा सबके सामने उभर के आएगा। और देखिए मैंने ऐसे कई लोगों को एग्जांपल देते हुए सुना है ऑफिस में भी या कार्यस्थल पर भी कि देखिए उससे सीखिए काम कैसे किया जाता है, उसकी फैमिली भी बहुत खुश है, वो खुद भी खुश है, ऑफिस में भी आके सभी कर्मचारी उससे बहुत खुश रहते हैं, वो सबका सहयोग भी करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सहयोग करते करते कई बार हमारी आदत ऐसी होती है कि हम हर किसी का सहयोग करना शुरू कर देते हैं, चाहे दूसरा व्यक्ति आपका नाजायज फायदा उठा रहा हो। तो मेरा कहना तो ये है कि कभी कभी हमें ना भी करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बातों को प्राथमिकता देना, देखिए इंसानी स्वभाव के चलते कई बार किसी की नेचर ही ऐसी होती है कि वो नहीं मना कर पाते हैं। आप उसके पास हेल्प के लिए आएंगे तो उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो मदद कर रहे हैं,
1: मना कर भी देंगे पर फिर भी उनको अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार मुझे मैंने गलत कर दिया। मना
0: बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए था, मुझे सहयोग करना चाहिए था। लेकिन इस चीज को अपने अंदर हीन भावना की तरह ना ले, जरूरी हो जाता है कई बार किसी को मना करना, क्योंकि जब तक हम दूसरों को मना नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति अपने काम की अहमियत को नहीं समझता है। हाँ, अगर उसको काम को सीखने में कोई दिक्कत है तो उसमें हमें सहयोग जरूर करना चाहिए
1: जी। और वैसे भी हम बात कर रहे हैं काम की, तो जैसे घर जो है एक सहयोग से चलता है, मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स का सहयोग उसमें होता है, तभी एक घर गृहस्थी जो है सफल होती है। तो उसी तरह से ऑफिस है, अगर पूरी टीम वर्क होता है ये भी एक तरह से,
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर हमें जो है अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए,
0: बिल्कुल रखना
1: चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये एटीट्यूड हमारे में,
0: कोई भी काम है वो सहयोग के साथ है। जब हम कहीं भी एटीट्यूड दिखाएंगे, कहीं पर भी अपनी धम्यता दिखाएंगे, तो यही होगा कि दूसरा व्यक्ति हमारा सहयोग करने की बजाय हमसे कतराना शुरू कर देगा।
1: बिल्कुल।
0: और रुचिका एक बात मैं और बोलूं कि जब तक हम चीजों में प्रबंधन करना नहीं सही से सीखते हैं, तब तक भी हम इन दोनों जीवन को, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन है, उनको अलग नहीं कर पाते
1: जी।
0: जिस तरह से घर में हमारा एक प्रायोरिटी रहती है कि हमने सुबह उठना है, नहाना धोना है, हमारी एक रूटीन बनी होती है ना
1: जी।
0: और उसके बाद खाना बनाना है, बच्चे स्कूल भेजने हैं, हमने ये काम करना है, आज बैंक के काम निपटाने हैं, उस तरह से हर गृहिणी जो है वो घर के काम काज में एक टाइम व्यवस्थित कर लेती है कि मुझे इतने समय पे ये काम खत्म करना है। उसी तरह से जो हमारा पेशेवर जीवन है
1: जी।
0: उसमें भी हमें अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर सेट करना चाहिए कि आज फलां समय में मुझे फलां काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। अगर इस तरह से एक प्रबंधित तरीके से हम अपने काम को करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारे काम का जो बोझ का जो प्रेशर हमारे दिमाग पे पड़ता है वो कम पड़ेगा, और समय पर जो हमारे टास्क हैं वो भी पूरे हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, डिस्टरबेंस की वजह से जो है वो टास्क की तो बहुत दूर की बात है, हम काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा माहौल को एडजस्ट करना। बट फिलहाल हमें कार्यक्रम का माहौल एडजस्ट करना है, तो उसके लिए तो हमें चाहिए एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, और ब्रेक तो बनती है
1: जी। तो अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और लेते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ साझा करने अपने विचार। कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि आप, क्योंकि प्रोफेशनल तो आप भी हैं और पर्सनल भी आप हैं, पर्सनल लाइफ भी आपकी है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी है, तो आपको क्या लगता है कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कितना अलग रखते हैं या मिक्स कर देते हैं, या आपने कभी उस लाइफ को मिक्स किया है तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं, या फिर कैसे मतलब आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है रूमा जी, क्योंकि जब भी हम पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी।
0: बिल्कुल आती हैं। देखिए, कई बार ऐसे होता है ना, अपने हम घरेलू तनाव को लेके या किसी तरह प्रकार की घर में कोई परेशानी चल रही है तो हम ऑफिस में जाते हैं। आपने खुद कहा कि ऑफिस भी हमारा दूसरा परिवार है, तो हम वहाँ पे अपने कुछ निजी बातों को अपने कुछ खास कलीग्स के साथ शेयर कर देते हैं। हमें उनके ऊपर विश्वास होता है और विश्वास के साथ या उस समय जो भी हमारी मानसिक स्थिति रही होती है, हम उनसे जब अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर कर देते हैं मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन वही निजी बातें हमारे लिए कई बार ऑफिस में कार्यस्थल पे वो हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि सामने वाले के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है
1: ये हम नहीं जान सकते,
0: बिल्कुल नहीं जानते। और कब वो हमारी निजी जानकारी को अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, वो हमें पता नहीं होता है। तो देखिए, हमेशा ही ये जरूर सोचें कि हम अपने घर की चिंताएं घर की दहलीज पे ही छोड़ के जाएं और ऑफिस की चिंताएं ऑफिस में ही। देखिए, घर में भी हमारे परिवार के सदस्य जब हम काम से वापस आते हैं तो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता इंतजार कर रहे हैं, घर में और भी नाते रिश्तेदार हैं, कई तरह की चीजें हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अपने मन की बातें हमारे साथ साझा करें। लेकिन जब हम इतना सारा तनाव कार्यस्थल का अपने घर लेके आते हैं तो हमारे पास उनकी बातें सुनने को समय नहीं होता है। दूसरा, घर के सदस्य हमारा चेहरा देख के जान लेते हैं कि आज हमारा मूड कैसा है, आज हम इनसे बात करें या ना करें। और कई बार क्या होता है, इस चक्कर में इम्पोर्टेंट बातें जो है हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है हम तो पहले से ही बहुत परेशान हैं, इनको परेशानी में क्यों डाला जाए। तो इन सब चीजों का भी हमें प्रबंधन जो है वो व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए, क्योंकि देखिए काम तो काम है, काम करेंगे, काम ही हमारी रोजी का साधन है, काम के सहारे ही हम अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, और यही एक जरिया है जो हमें जीवन में अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन निजी जिंदगी से ये काम बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि निजी जिंदगी तो निजी है ना, उसको हम व्यक्तिगत या प्रोफेशनल के साथ जोड़ के रख देंगे तो हमारा जो काम का सिलसिला है, चाहे वो घर है या बाहर है, वो एकदम से खराब हो जाएगा और हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के शिकार हो जाएंगे। और आपने देखा है रुचिका, आजकल के समय में बहुत सारे व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनको शुगर की बीमारी है,

0: वो थायराइड की बीमारी है
1: जी।
0: आए दिन सुनने को मिलता है नवयुवकों को ही हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां जो है वो घेर ले रही है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जो हैं वो प्रोफेशनल और निजी जिंदगी की जो उलझनाएं हैं उनको इकट्ठा करके चलते हैं और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों को हमने अपने घर में आने का न्योता दे रखा है।
1: बिल्कुल। और वर्क प्लेस में ना कभी भी हमें रिश्तेदारियां लेके नहीं आनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब हम रिलेशंस वर्क प्लेस में लेके आ जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी अपने आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिलेशन हो सकता है आपका एक पर्सन के साथ है पर जब बाकी भी आपके एक तरह परिवार की तरह ही है तो मतलब वहाँ पर फिर वो पार्शियलिटी वाली बात तो हर किसी के मन में विचार वो गलत गलत से विचार आने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो माहौल जो है बिगड़ जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। और हो सकता है कि जैसे मैंने ही किसी से बात करनी तो मैं पहले सोचूं कि यार ये तो रिलेटिव्स है तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या बोल देंगे, ये वो सो, मतलब बहुत सी बातें ऐसे दिमाग में चलती रहती हैं।
0: बिल्कुल। तो, और इन बातों को नहीं चलने देना है, यही बातें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं और फिर यही वजह होती है कि देखिए एक कर्मचारी कार्यस्थल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, तो शायद रीजन यही है कि उसने अपने व्यक्तिगत और निजी जीवन को दोनों को अलग रखा हुआ है।
1: जी। और ये जरूरी भी है क्योंकि जब हम इसे अलग नहीं करेंगे तो वही बात आ गई ना कि हम एक तरह से पोजेसिव से हो जाते हैं, हम किसी भी काम में फिर वो सीरियसनेस ना तो हम अपने स्टाफ को बोल सकते हैं ना तो हम खुद, क्योंकि हम खुद ही वैसी हरकतें अगर करने शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली हम किसी को नहीं बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और चीज रुचिका मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम कार्यस्थल में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो भी सहयोगी स्टाफ है हमें उनकी सहयोग लेने से गुरेज नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। यहाँ पर सीनियर और जूनियर का बहुत ज्यादा चलता है।
0: देखिए हर एक व्यक्ति हर एक काम में पारंगत नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: जो सक्षमता मुझ में है जरूरी नहीं है वो आप में हो, या जो आपके पास सक्षमता है वो मुझ में नहीं है, तो यहाँ पे अपने कलीग्स के साथ अगर किसी भी प्रकार की काम को लेके समस्या आती है तो हमें शेयर करने से नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम स्मूथली जाएगा और जब काम स्मूथ होगा तो जाहिर सी बात है टेंशन भी कम होंगी।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पे अब आपने ये बात की है तो यहाँ पर भी मुझे पर्सनल इश्यू जो है सामने नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि जैसे अब मेरा ही कोई फ्रेंड है तो बाहर हमारा रिलेशन कुछ और है, तो जैसे हमारी बीच में कोई होगी लड़ाई होगी या कुछ भी होगा और ऑफिस में हम एक साथ काम कर रहे हैं तो जैसे कि मुझे नई चीज नहीं आती तो वहाँ पर वो इश्यू आ जाता है बीच में कि नहीं मैं क्यों बताऊं, भाई ये तो मेरे साथ लड़ाई की है, ये किया है वो किया है तो मैं तो नहीं बताऊंगा मुझे आता है, तो मतलब वो वाली चीज मुझे लगता है यहाँ पे गलत।
0: बिल्कुल। ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए काम तो काम,
1: काम,
0: वो
1: काम
0: हम सब सहयोग के साथ ही करेंगे और वहाँ पे अगर हम में कोई हुनर है और हम अपने सहकर्मी को बताने से टलते हैं तो ये तो हमारे आप अपने आप में एक इगोइस्टिक होने का बहुत बड़ा एग्जांपल भी है और ईगोज को हमें साइड में रखना ही पड़ेगा, तभी हम किसी भी काम को पूरी सहयोग और शिद्दत के साथ कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और काम को करने के लिए हमारे में वो लगन और वो मेहनत और वो ईमानदारी होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब तक वो ईमानदारी हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। और एक बात मुझे ये भी जरूरी लगती है रूमा जी कि जब तक हम जिस काम में इंटरेस्टेड नहीं है हमें उस काम को नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि बिना इंटरेस्ट के जब हम काम करते हैं तो हमें खुद को तो पता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है पर हम सभी को परेशान कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और ये सभी को जो परेशानी दी जाती है ना ये फिर बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर देती है हमारे जीवन में।
1: जी।
0: हमारे हम तो तनाव में आते आते हम दूसरों को भी तनाव में।
1: जी बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो है फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, बैकग्राउंड जो है वो ठीक है, मुझे किसी वो जरूरत नहीं है, मैं किसी अपने शौक के लिए जॉब कर रही हूँ, मतलब होता है जरूरी, बट ये है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, बस किसी ने बोला और मैं
0: जी जी,
1: तो वहाँ पर फिर ये होता है कि कुछ हमारी वजह से जो जरूरतमंद लोग होते हैं जिन्हें की काम की जरूरत होती है और वो बेचारे मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो जब वो भी सफर करते हैं तो सोचिए उनकी फैमिली भी सफर कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम अपनी वजह से कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक चीज और आपने कहा ना शो ऑफ करने की बात।
1: जी।
0: तो मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है वो अपने पारिवारिक स्टेटस को, रुतबे को, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है
1: जी,
0: इस चीज को अपने कलीग्स के ऊपर उनके सामने धौंस जमाते हैं इन चीजों की, उनकी पहुंच ऊपर कहाँ तक है या वो क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीजें भी प्रोफेशनल जीवन और निजी जीवन को प्रभावित करती हैं। इन चीज सब चीजों से हमें बचना चाहिए। देखिए आपकी पहुंच है, आपका रुतबा है,
1: वो आपकी जगह है।
0: आपने बिल्कुल आपने कहाँ से, आपने भी तो अपने माता पिता से पुरखों से उसको अर्जित किया है, उसको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये गलत बात है कि आप उसी रुतबे का आप जाके बखान करें और अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने सहकर्मियों को उसमें आप नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आप अपने व्यक्तिगत सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सामने तो व्यक्ति कुछ भी बोलता है लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई ही करते हैं।
1: जी बिल्कुल, और उस काम में फिर मजा नहीं आता है कि कोई हमारे सामने तो बहुत मीठा बन रहा है और पीठ पीछे हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। खैर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे मुंह पे बोलिए, क्योंकि वो बात जो है कुछ समय के लिए बुरी लगेगी
0: बिल्कुल,
1: पर ये है कि फिर लाइफ टाइम के लिए सही हो जाता है।
0: बिल्कुल, और हम इन चीजों के साथ सहयोग करके एक दूसरे का जब सहयोग करते हैं, अगर किसी की कमियों को उसके सामने उजागर कर देते हैं या उसने कुछ गलत है उसके जीवन में या वो कुछ गलत कर रहा है, तो हम एक अच्छे साथी बनकर, सहयोगी बनकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की, तो वैसे ही हमें अपनी अपनी निजी जिंदगी को ना किसी के सामने उजागर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें कोई समस्या है उसका समाधान भी कहीं ना कहीं होगा, और पारिवारिक समस्याओं का समाधान हमें परिवार के बीच बैठ के ही निकालना चाहिए, ना कि अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि कलीग्स एक तरफ समस्या का शायद समाधान तो बताते हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी जो रिस्पेक्ट है उसके साथ भी वो छेड़छाड़ करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और आपकी पीठ पीछे पता नहीं किस तरह की वो बातें बनाते हैं, और ये तनाव का कारण बनती है। और जब तनाव हमारे जीवन में आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में कोई भी लड़ाई चल रही है, चाहे कोई कुछ भी कितनी ही बड़ी सिचुएशन जो है क्यों ना हो गई हो, ऑफिस में बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ऑफिस में चाहे कुछ भी हो जाए वो घर पे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही जरूरत है तब आप शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, खासकर रुचिका एक आपने जब बात करी ना कि ऑफिस की बात कार्यस्थल पे ना बताएं, कार्यस्थल की बात घर पे ना बताएं, तो ऐसे मैंने अपने कई महिला साथियों को देखा है जिनकी नौकरी सिर्फ इसी वजह से छूट गई है क्योंकि उन्होंने कार्यस्थल की हर एक बात
1: घर पे बता
0: घर पे बता दी है, और घर वाले उन बातों का क्या मतलब लेते हैं। देखिए, हर किसी की सोच समझ एक जैसी
1: अलग अलग होती है,
0: उन बातों का क्या मतलब चला जाता है ये बाद में पता चलता है उसका जब हमें परिणाम सामने आता है। तो इसलिए कभी भी अपने घरेलू बातों को कार्यस्थल में और कार्यस्थल की बातों को घर पे जाके डिस्कस करने से हमें बचना चाहिए। और दूसरा, एक बार और रुचिका, आजकल ना हमारी जिंदगी में बहुत तनाव है, काम भी बहुत है, व्यस्तताएं भी बहुत है। रुचिका, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपसे, हमारे बहुत से जो सहयोगी साथी हैं वो अपने ऑफिस का काम जो है वो घर पे लेके चले जाते हैं, और घर में भी फिर परिवार के सदस्य परेशानी से उनको देख रहे हैं कि हमसे कब बात करेंगे, हमारे लिए कब समय निकालेंगे, बच्चे भी उनको आसपास मंडराते हैं, और जो तनाव होता है उनका काम का, जो उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाया होता है, उसकी वजह से वो बच्चों के साथ भी ठीक से बात नहीं करवाते हैं, घर में भी लड़ाई हो जाती है, और देखिए फिर नतीजा क्या निकलता है, जो काम लेके गए होते हैं वो भी सही से पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि रात भर उनको जागना पड़ता है, क्योंकि सुबह जाके ऑफिस में अपने बॉस को उन्होंने बताना भी है वो काम। तो इस चीज के पीछे मुझे ये लगता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं होती है। तो हमने पहले भी कहा कि जब भी आप अपना कोई भी काम करते हैं उसमें समय निर्धारण जरूर करें कि मुझे इतने समय में ये काम खत्म करना है, साथ ही साथ उस काम में भी प्रायोरिटी के हिसाब से उस काम को प्राथमिकता के हिसाब से करें, ये काम आज मुझे करना है तो करना है। मैंने कई अपने साथियों को ऐसे भी देखा है कि आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आता है तो वो उसी दिन वो एक दिन पहले काम करना शुरू कर देते हैं, और ये जो टाइम की जो उन्होंने मैनेजमेंट काम का जो प्रबंधन सही से नहीं किया होता है, इस वजह से समय पर प्रोजेक्ट नहीं जा पाता है, अगर वो जाता भी है तो उसमें हजारों त्रुटियां होती हैं, फिर बॉस के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स हो जाती है, और जब बॉस का गुस्सा होगा तो ऑब्वियस है घर में भी गुस्सा
1: हो घर में, फिर वो घर पे निकलेगा जी। तो बहुत जरूरी है हमें अपनी कुछ बातों को, यानी कि जो पर्सनल बातें हैं वो, सबसे पहली बात कि हमारी जो पर्सनल बातें वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम भावनाओं में बह जाते हैं और उस समय हम इतने वीक पॉइंट पे होते हैं कि हमारे साथ जो भी प्यार से दो शब्द बोल ले, प्यार से हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो हमें ऐसे लगता है कि इनसे बढ़कर तो हमारे लिए कोई नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम उनके साथ बातें शेयर कर देते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद उनके साथ अगर खिटपिट हो गई तो वो बातें यहाँ की वहाँ पहुँच जाती हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है,
0: तो तनाव ये फिर आएगा ही वो।
1: जी।
0: अच्छा रुचिका, इन्हीं बातों के साथ मेरे को एक गीत याद आ गया है दिमाग में, नया दौर फिल्म का गाना है साथी हाथ बढ़ाना। मैं चाहती हूँ कि हम अपने सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ ही मिलकर गाना सुने।
1: जी बिल्कुल, जाते जाते अब समय भी हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का, तो जाते जाते उन्हें ये गीत भी सुना देते हैं। और आप, आज हमने बहुत ही गंभीर बातचीत भी कर ली है, बहुत ही प्यारी, कि हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को क्यों अलग रखना जरूरी है, क्यों उसे इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। तो जाते जाते आप बता दीजिए कि अगर उन्हें कोई इसमें और मतलब कि कोई कंफ्यूजन है या कोई भी सुझाव वो देना चाहते हैं कि हमारी बात में कोई गलती हो गई हो बोलने में या कुछ भी, तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आपका सुझाव जो है वो बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि सहयोग और सुझाव के साथ ही सारे काम जो है वो सही से दुरुस्त तरीके से चलते हैं। तो दोस्तों आप हमें अपने सुझाव भी देते रहिए और हमसे कोई सुझाव या जानकारी आप चाहते हैं तब भी हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9418431223। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देते हैं अपनी बातों को विराम।
1: जी दोस्तों, तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, और जाते जाते एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा को।
1: धन्यवाद।

0: मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविज़न, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविज़न और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्यघर।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
6: Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
8: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
9: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
10: Oh no!
8: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
9: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

अगला गीत सुन दे रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

2.2 MHz पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
8: Oh no!
6: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

नमस्कार श्रोतों, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो सब, उम्मीद करना तो सब खरे भुने, अपने अपने क्षेत्र माँ अपने अपने एरिया मंच खरे भुने, खुश भुने और तंदुरुस्त भुने ही है ना। ये सब कुछ होना बड़ा ज़रूरी है, तंदुरुस्त और इंसान जो खड़ा रहना भी बड़ा ज़रूरी है। श्रोतों बहुत सारी जानकारी जो तुझ हो गया से शेयर करनी ने तो सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं इस नंबर मंज अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं श्रोतों 7018889 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करी ना 7018889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करे करे अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं श्रोतों। तो धर्मशाला में रोहित रा जलवा भुना हा दत्ते श्रोतों, बिल्कुल अफगानिस्तान रे खिलाफ दत्ते किया सो शुरू भुना त्राई मैचारा वनडे सीरीज और पहले मुकाबला के सो धर्मशाला मंच भुना हा। और थैंक यू श्रोतों, सो आज बेहद ज़्यादा ट्रैफिक किया सो धर्मशाला में हेरने जो सो मुड़ेगा जो कि आदत किया सो मैच है श्रोतों और बिल्कुल आगाज़ के त्राई मैच है ये सीरीज है श्रोतों और आगाज़ किया सो आगाज़ किया सो धर्मशाला करो करता मेज़बानी किया सो धर्मशाला करो करता है। और आइया फिलहाल आगाज कर लेंदे न है भी कार्यक्रम रहा इस गीता सो की और तथों बाद फिर तुंदी सभी री फरमाइश आके सो भी पूरी कर ले तुंदी सभी री जानकारी तुसु जो आसु तक पहुँचानी सो भी तुस ऐह जरूर दस ले सो तो आइया आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहे इस गीता होगी तो सब ए बनी रहा जुड़ी रहा वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो की गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हंसूगी जुड़ रहे नसूगी बन रहे तैयारी

0: बहुत सारी गल्लां बहुत सारी बातें जो तुसो की शेयर करनी, बहुत सारी जानकारी नहीं इवन की जो तुसो गया सो शेयर करनी है इन श्रोताओं, और बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जिन्हें तुसो गया है शेयर कर देन रूबरू कर बंदे ने, है ना जी। तो चलिए जी, इनके पहले श्रोता हंसू होगी कनेक्टेड थे अब लेकिन डिसकनेक्ट हो चुके हैं, फिर कोई श्रोता कनेक्ट होंगे तो जरूर तू होगी यह रूबरू कर वाले श्रोताओं। अब जो कोई करीबन करीबन आई थिंक टाइम बुना एक डेढ़ बजे रहा टाइम तो है कि डीसी ऑफिस रह बाहर किया, सो जो पालमपुर वाला रोड है इन द योल पालमपुर वाला रोड के तड़ी एक बस किया, सो थोड़ी करे अनबैलेंस भोया और ठेरी बजों के सो बस सारा फ्रंट शीशा टूटुआ, इतनी कोई मतलब माड़ी मोटी चोट गए ना, सो सवारी लगी ज़रूर भूनी है ना, लेकिन तड़ी जो पुलिसकर्मी मौजूद थी तिया तो मेरी गलबात हुई तो तिया ये दसो कि टेम्पू के इच्छू कर दो तू सेरी करखा नगर का 80% सेरी गलती थी और ठेरी वजह के ये हादसा किया सो हुआ हा, और इस हादसे तो बाद किए सो तो सो काफ़ी लंबा जाम किया सो हेर ने जो मुड़ो, और इवन की भीड़ बहुत दुगनियाँ तो भी है जो कि दत्ता है अफगानिस्तान और इंदे भारत रहा मैच है, और तति वास्ते भी किया सो इंदे जो हिमाचल प्रदेश रह मनो इंदे जम्मू कश्मीर रहे पंजाब रहे चंडीगढ़ रहे दिल्ली रहे लुधियाना रहे है ना सभी जगह रह मनो के ना सो अजड़ी विराजमान हिन, और थेरी वजह भी थोड़ा करे ट्रैफिक किया सो धर्मशाला में ज़्यादा है, और उपरों अगर एक्सीडेंट बुझेगो तो इतों और ज़्यादा किया सो ट्रैफिक बढ़ गए एक्सीडेंट की सो कचहरी बुआ सो तो डीसी ऑफिस रे बाहर वे दीवार की सो टूट गए हल्की नी पेड़ की तड़ी तत्यो भी खरोच आया, और बाकी माड़ी मोटी तो लगे ही बुने है ना। तो इनके श्रोतागण असू की कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बलून देन और कड़ी थो बलू कर देन तुम्हें सभी फरमाइश जरूर यह पूरी कर ले श्रोताओं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। ठीक ठाक राजीव बाजी?
1: हाँ जी सर जी राजीव भाई।
0: जी कुंडन की थोड़ना तुसु
1: सर जी हंसराज रघुवंशी की आवाज़ सुनाई नहीं हो आसामिया।
0: अच्छा ठीक है जी, बड़ा प्यारा गुरु ही है हंसराज रघुवंशी जी, ये गीत आसामिया तो जरूर होने ले जनाब तुसु।
1: धन्यवाद सर जी।
0: धन्यवाद जी। तो सब श्रोता भी जुड़ी सकते हैं सो गए 7088879 पर कॉल करे करे नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करना साझा करना 7088879 पर इंदे अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो नमस्कार जी।
2: सचिन भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते चिकुन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन।
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी। नमस्ते
2: जी भाई नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार कौन बोल रहे हैं और कड़ी थो बोल रहे हैं जनाब?
2: जनी और बोल रही।
0: हां जी
2: वाह वाह नहीं हो रही क्लियर मारी।
0: अच्छा जी बुसगदा मौसम तो साफ है।
2: आ गए।
0: चलिए बहुत अच्छी गल है जी। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थो बोल रहे हैं जनाब?
2: हां वो बोल रहा है अशोक कुमार से बड़ी तो।
0: अच्छा अच्छा जी अशोक जी कुन्ने गीत थोड़ा पहले तो फरमाइश दस दी अपने
2: लमिया डोरन ला मेरा बाबा।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर आज इन दिशा सी ना छोड़ ला।
2: बड़ी बड़ी धन्यवाद हो रहा
0: तुंदा भी धन्यवाद जी। वीडी गुंजन धर्मशाला सो गए बने रहे तुंदा अपना ये वीडी गुंजन है ना जी। धन्यवाद श्रोतों कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही बिल्कुल लाइव तो हूँ कर दिन, और हेरा कि आज भी लाइव करने का मकसद ये भी है कि आज भी रेडियो सो के किया सो कितने मनु के ना सो कनेक्ट हिन असु सो के सो तो है हेरी सकते हिन। हेलो नमस्ते जी।
3: नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
3: ओ ठीक ठाक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है भले तो ठीक ठाक ने राजीव बाजी ने।
3: हाँ जी हाँ जी ऐसे

0: करे लग रहे जी।
1: बस ये गा वड़ ना लगो सु मेलो गाना सुन लंदा मेलो।
0: क्या बात है, कौन बल्लू कर देन और कड़ी थों बल्लू कर देन।
1: ओ हर सिंह बल्लू करंदा दारनु सा।
0: अच्छा हर सिंह जी दारनु थों बल्लू कर देन, तो है घा पट्ठे रा काम किया सो अपू कर देन।
1: काटी लंदे कणकी कणकी।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है, वो भी शरीर थोड़ा करे चलता रहे तो ठीक रहता है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी। और नोएता जी कुछ तुंदे दारनू रे।
1: दारनू ठीक ठाक ही है अबे सर, हल्ली सर कुछ ऐसी गल ना ठीक ही ना।
0: हाँ जी ठीक ठाक है दारनू जी।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी, ठीक ठाक ही बुने सिंधा दारनू वे दारनू रे मनु वे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जी, कुंड देना गीत हुन मेरी चाहत रखे तो है खेती बाड़ी करते करते।
1: दूड़ू नचे जट्टा वो खलारी हो।
0: अच्छा दूड़ू नचे या जट्टा वो खलारी हो।
1: हाँ
0: ठीक है जनाब, जरूर हुन लेते सुए गीत।
1: धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जी। तो आइए शो तो हम कार्यक्रम तो है सब हुनु कर देने इंदी अपनी गप्पा हो धूड़ू नचे या जट्टा वो खलारी करी गीत किया सो तो सभी जो हुनाना सु, लेकिन तुम्हें से मेरी फरमाइश भी जरूर पूरी करनी ने। धीरे धीरे आइया फरमाइश और दौर गया सो पूरा कर देन।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और सचिन कपूर सो की तो है कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हुनु कर देन। हाई है कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगो बढ़न देन श्रोता और फरमाइश और दौर के सोसु जरूर धीरे धीरे किया सो पूरा करना हा, लेकिन आइया जानकारी रा दौर के तस्वीर धीरे धीरे किया सो जरूर पूरा कर देन। श्रोता त्राई भारती रिकी आसो मौत भेजें कि सब फेसबुक और अन्य न्यूज़ चैनल रे माध्यम तो होनो भी करते थे और इधी पर किया सो भारत है अमेरिका था किया सो कड़ा रोष किया सो जता हुआ सो तो बिल्कुल इंदे भारत है किया सो अमेरिका था कड़ा रोष किया सो जता हुआ और अग पत्र भी रोष भरा पत्र किया सो भी अमेरिका जो सौंप हुआ सो तो सी एम रहा सपना किया सो साकार हुआ सो तो स्ट्राइट प्रोजेक्टरी ईडीबी जो कि असो मंजूरी भी मुड़े हा दिती हा और अध्ययन अवकाश लेने पर कि असो कर्मी जो मुड़ने अब कर्म जो अधी छुट्टी मुड़े सो तो सो लेकर भी किया जो कर्मी हिन तिन्यों कि असो पूरा वेतन मुड़ना हा। इंडिया भी औरतों की आशोतों सो दत्ते ऐह क्या ना सो मेजबानी करू कर दें धर्मशाला आले इंडिया और इंडिया और अफगानिस्तान रा मैच के सो दत्ते 1:30 बजे तुंदे अपने धर्मशाला रे क्रिकेट स्टेडियम में जो कि धौलाधार पर्वत रे आंचल में बसुरा हा सो तो एक खूबसूरत स्टेडियम दो तेड़ी 1:30 बजे किया सो मैच शुरू बुझ गाना हा सो तो NHI जो सौंपू आ प्रदेश है त्राए NH और प्रदेश भर में किया सो चार्ज बुझ सकती है वे HRTC भी ई बसा सो तो जी बिल्कुल तू तो दसना चाहते कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन और प्रदूषण रहित हिमाचल बनने जो किया सो पूरा जोर किया सो लोरा हर्ष होता हूँ और अब प्रदेश में भी किया सो HRTC भी इलेक्ट्रिक बस सड़क पर जिन पहले भी दौड़ू कर दी ना अब और दौड़नी ना और तेरे वास्ते प्रदेश में किया सो 297 बस और खरीदी श्रोता हूँ और ये बस हिमाचल पुजने वाली ही हिन 102 बसा प्रदेश में पुज भी चुकरी हिन इन बस थों संचालन रे वास्ते श्रोतो तू दस न चंदा 35 जगह और 50 जगह किया सो चार्जिंग स्टेशन स्थापित भी हुए हिन 50 जगह ना 297 बस और खरीदी हिन 102 पुजगी बाकी न और 50 जगह के सो चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित हुआ हिन। तो एक कुछ अन्य जानकारी जो तू सो गया है शेयर करी रेडी गुंजन धर्मशाला मंच और जाहिर थी गल कि फेसबुक रे माध्यम तो भी है तुस तक किया सो शेयर करू कर देन इन गल जो इन जानकारी जो खास कर तो सब जुड़े सकते हैं जी 7018879 अक पर कॉल करे करे नंबर अक मौके फिर शेयर कर देना 7018879 अक पर तो है सब श्रोता जुड़े सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सोहनी सकते हैं। तो चलिए फरमाइश और दौर है पूरा कर देना और श्रोताओं तू सब भी होने देने प्यार दिया गीत तुंदे वीडियो सेट में

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो तो ऐसा बहुण कर देन रेडियो सेट में बिल्कुल लाइव रेडियो गुंजन धर्मशाला में तुंदा अपना रेडियो गुंजन तुंदा अपना रेडियो गुंजन जितने भी इस समय इस गाते कार्यक्रम जो हुणु कर देने अपने गाते कार्यक्रम जो हुणु कर देने तैयार हो तो दिल तो आंख मौके फिर स्वागत कर रहा हूँ हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ श्रोताओं तो यह सब जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत हो ही सकते हैं 7018 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आंख मौके फिर जनाब 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो है वो बढ़न देन और इन अगले श्रोता आस होगी कनेक्टेड हैं पूछते हैं कौन बोलन देन और कड़ी तो नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: ओ ठीक ठाक है ना।
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोलन देन और कड़ी तो बोलन देन जनाब।
1: हाँ सर टिल्लू हम बल्लूंदा करतार।
0: करतार जी टिल्लू तो बल्लू कर देन क्या बात है। और ठीक ने टिल्लू वाले सब।
1: ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ।
0: ਕਰ ਕਰ ਲਗੁਰਨ
1: ਬਸ ਜੀ ਕਰਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ
1: ਆਏ ਨਾ ਰ ਗੁਰਨ ਤਿੱਲੂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੜਦੇ ਆ ਪੰਖੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਢਕਾ
0: ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਜ ਬੇਗੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਗੀ ਆ पर चलो अपने टीलू जो तो संभाल कर रखे और इने वाली जनरेशन जो बोलने की इस टीलू जो ये संभाल कर रखे है ना कि जरूरत ना पया एड़ी जो पर्यावरण रे देन है ना सो देन ही है बने रहा। जी जनाब कौन देने की थोड़ा पसंद कर ले
1: मुक्कू मेरे छिकड़ू का खर्च बैरी आप बारे हो।
0: अच्छा टूटी मेरे छिकाणू रे काची वो वेरिया भाड़े हो ये गीत है।
1: जी जी
0: क्या बात है। ठीक है जी जरूर होना है होने ले तो सु
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद जनाब धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: चलिए श्रोतों तो कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंगे और अगली फरमाइश भी आसू जरूर पूरी करनी लेकिन अपने अगले श्रोता जो पहले कर लेंगे है कनेक्ट तो सभी सोगी रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी। नमस्ते जी।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार जनाब कौन बोल देन और कड़ी थो बोल देन
2: सर बड़ोलिया वल्लू करनो नाग बंदर ओम प्रकाश
0: बड़ोली थों भाक्सू नाग मंदिर ओम प्रकाश जी।
2: हाँ जी सर।
0: ठीक है ओम प्रकाश जी स्वागत है तुम्हारा वेड़ी गुंजन में ठीक ठाक ना।
2: हाँ जी ठीक है सर।
0: और कर कर लुगरेन
2: बस जो घरे थोड़ा काम लग रहा था अभी शुरू कर दे रेडियो।
0: अच्छा अच्छा तो मौसम खरा धूप लग रही है आज तक।
2: अच्छा तो धूप लग रही है लग रही
0: है ना जी।
2: हाँ जी
0: आज तक ठीक ठाक ही रहो मौसम ही थोड़ा भारी पियो थो
2: जरा भारी सुबह जरा ठंड कर करी पूरी है
0: ठंड करी थोड़ी बिल्कुल और आज तक चक्रे की दत्ते मैच भी है ना जी तब पूजा पाठ भी बचूरा

0: गीत होण ना सूरा केरे मगड़ू खोले रोआ केरी गल्ला लानी।
1: सूरा खेरे मगड़ू खोले हो। अच्छा
0: हाँ जी
1: ठीक है जनाब, जरूर सुन लेते सू बड़ोली वाले हुए गीत।
0: बड़ी मेहरबानी,
1: ठीक है जनाब, धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओके
1: शोध एफ एम 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा। और चलिए जी लेके चलते हैं तू सब भी जो इस प्यारे देगी तरीके नारी फरमाइशरा दौर किया सो है पूरा लूरा वह करना शोधों।

0: Let's see how to convert.
1: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारी दी आवाज़ सुनील राणा जी ने, और बहुत ही प्यारे दे गीत श्रोताओं की। धूड़ू नचिया जटा हो खलारी के, नचे धूड़ुआ जटा हो खलारी के, बजे तेरे बाजे हो, क्या बात है। और श्रोता तो सब जुड़ रहे इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया, और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा चल रही तुंदे वीडियो सेट पर बिल्कुल लाइव। ता कार्यक्रम में अज दौर के श्रोताओं सोए चले रहना जानकारी रहा दौर भी, और तो सोगी सोगी गीत संगीत रहा दौर भी किया सोए चले रहना श्रोताओं। ये कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगू है बढ़ाई दिन दिन श्रोता सूगे कनेक्टिव थी लेकिन डिसकनेक्ट उतर गया। तो श्रोताओं केंद्र रही लापरवाही थो कि 800 ट्रैक थो उतरी गई है कांगड़ा घाटी रेलगाड़ी रेलगड्डी जी। पूरी जानकारी तुस हो गया है जरूर शेयर कर देन, पूरी जानकारी तुस हो गया है जरूर शेयर कर देन जनाब। हिमाचल प्रदेश रे इतिहासिक धरोहर और पर्यटन री पहचान मनीगंधा कांगड़ा घाटी शतो। रेलवे रे संरक्षण आधुनिकीकरण और बेहतर संचालन जो लेके क्षेत्र में आके मौके फिर आवाज़ बुलंद बुना लगी हा। पठानकोट तो जोगिंदर नगर तक शतो लगभग अक सदी थो अधिक समय संचालित बुचिगो शतो, और रेल मार्ग केवल परिवहन रा साधन नहीं बल्कि कांगड़ा घाटी भी संस्कृति इतिहास पर्यटन और आर्थिक गतिविधि व महत्वपूर्ण गतिविधियों रा किया सो महत्वपूर्ण आधार रेव हा, जो किया है सब बखूबी जान दहिन। स्थानीय मनु सामाजिक संगठन और रेलवे प्रेमी वा मनना है कि पिछले कुछ वर्ष तो किया सो कांगड़ा घाटी रेलवे में स्थित लगातार चिंताजनक स्थिति की माफ करा सो लगातार चिंताजनक बुंदे गई या रेलवे ट्रैक स्टेशन भवन यात्री सुविधा और संचालन व्यवस्था तो की अपेक्षित सुधार ना होने का कारण एक या सो विश्व स्तरीय पर्यटन क्षमता रखने वाला रेल मार्ग अपनी पूरी संभावना व लाभ ना चुकी सकुआ क्षेत्र रे बनु राय बलना है। श्रोताओं एक कहना है कि यदि जम्मू रेल मंडल कांगड़ा घाटी रेलवे का प्रभावी संचालन और रख रखाव सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है तो रेलवे मंत्रालय जो इस रेल मार्ग जो किसी अन्य मंडल रे अधीन किया सो लेने पर विचार करना चिंता है। मनु रे मनना है श्रोताओं की अम्बाला मंडल जो कालका शिमला रेलवे जैसी विश्व प्रसिद्ध विरासत रेल सेवा का सफल संचालन करता है। कांगड़ा घाटी रेलवे वे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की सो निभाव करता है। सो तो तटीय कुछ मनु ये बल्लू कर दिन कुछ मनु रहे मत है कि फिरोजपुर मंडल रे अधीन रहते हुए इस रेल मार्ग का संचालन किया सो अपेक्षाकृत बेहतर थो, इसलिए पुनः तस्यू मंडल रे शामिल तस्यू के सो पुनः मंडल में शामिल करने व भी विचार किया सो करना चाहता है। बहरहाल जानकारी रहा सिलसिला ये चलते रहना है। तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में वेडी गुंजन धर्मशाला मंच, और इन दे श्रोतागण अजोगी कनेक्टेड थी है, लेकिन माफ़ करा दो ही श्रोता थी है जी। तो ये पूछ सकते हैं अब फिर कनेक्ट 7088 8 8 7 0 9 8 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो जरूर हो सकते हैं। तो चलिए जी, टूटी मेरे छिकणों रे का छी वो बैरी है भाड़े वो गीतर आनंद।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नए सोतन दे रेडियो सेट में बिल्कुल लाइव चल रही है। ता श्रोतों अब हूँ सचिन कपूर तुसु तो ले लेनो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहनो तुसु सब भी जो हंस दे रहे मुस्कुरा दे रहे माँ बाप री सेवा कर दे रहे और अपने इस गादे कार्यक्रम जो ये हूँ दे रहे। नमस्ते धर्मशाला।

Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 3 भारतीयों की मौत, भारत ने अमेरिका से जताया कड़ा विरोध। सीएम का सपना साकार होगा, स्ट्राइड प्रोजेक्ट को एडीबी की मंजूरी। अध्ययन अवकाश लेने पर भी कर्मियों को मिलेगा पूरा वेतन। इंडिया के एक और दल में टूट के आसार। एनएचएआई को सौंपे प्रदेश के 3 एनएच। प्रदेश भर में चार्ज हो सकेंगी एचआरटीसी ई बसें। अब समाचार विस्तार से।

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य हमले शुरू होने के बाद खाड़ी के जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाज भी निशाना बन रहे हैं। पिछले चार दिनों में ओमान तट के पास भारतीय चालक दल वाले तीन जहाजों पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। इन हमलों में तीन भारतीय नाविकों की भी मौत हो गई। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले को अमेरिका के समक्ष मजबूती से उठाया है और अमेरिकी प्रभारी राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध पत्र सौंपा है। राज्य सरकार ने सेवावधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया। पहले अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। राज्य सरकार ने CGS अवकाश नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत अध्ययन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान 100% वेतन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सभी 3,758 ग्राम पंचायतों को जल्द ही अत्याधुनिक मौसम निगरानी तंत्र से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम योजना के तहत प्रदेश भर में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और स्वचालित वर्षामापी यंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हिमाचल की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि RDG बंद होने के बाद प्रदेश को आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और अब तक मिली सहायता इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने केंद्र से 25,000 करोड़ रुपए की जगह 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की, ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित ना हो। हिमाचल को ग्रीन हिमाचल और प्रदूषण रहित हिमाचल बनाने की पहल में अब प्रदेश में भी HRTC की इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके लिए प्रदेश में 297 बसों की खरीद की गई है और ये बसें हिमाचल पहुंचना शुरू हो गई हैं और 102 बसें प्रदेश में पहुंच चुकी हैं। इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश के 35 जगहों पर 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित राज्य के निजी स्कूलों में आयोजित होने वाली 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालय अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्वयं अपने स्तर पर कर सकेंगे। इससे पहले सरकारी कॉम्प्लेक्स स्कूलों में पेपरों का मूल्यांकन होता था। पंचायत चुनाव में ड्यूटी देने के बाद अब शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी में लगाया गया है। स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होते देख जिला स्तर पर अनोखे आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षकों को निर्देशित किया है कि पहले स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएं, इसके बाद वे जनगणना का कार्य करें। चंबा, कुल्लू और हमीरपुर जिले में प्रशासन की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षक इन आदेशों के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। पहाड़ों की रानी शिमला में प्रस्तावित अत्याधुनिक केबल ब्रिज, फ्लाईओवर और नई टनल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम ने सुखू सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्ट्राइड को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। ADV की टीम 3 दिनों में प्रदेश में हो रहे और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, साथ ही प्रस्तावित कार्यों की साइट्स का विजिट भी कर लिया गया है। भूकंप संभावित हिमाचल प्रदेश में जानमाल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सरकारी संस्थागत और निजी भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी डिजाइन और निर्माण मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले योग्य इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कराई जाएगी। वहीं बड़े सार्वजनिक, व्यावसायिक और निजी भवनों के लिए वोट पार्टी स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग समेत अन्य में सेवाएं दे सकेंगे। ऊर्जा विभाग के निर्देशों के बाद बोर्ड प्रबंधन ने इस दिशा में काम आगे बढ़ाया है और इच्छुक जूनियर इंजीनियर से सहमति मांगी है। इसके लिए उन्हें 24 जून तक का वक्त दिया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 3 नेशनल हाईवे को NHAI के हवाले कर दिया है और इसके चलते अब इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI की रहेगी। इन 3 हाईवे की कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के पुरुषों एवं महिला के 80 पद भरे जाने प्रस्तावित हैं। इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं से ऊपर रखी गई है, जबकि आयु सीमा 20 वर्ष से 36 वर्ष तक की रखी गई है। चयनित आवेदक को 15,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी की तरफ से नियमानुसार दी जाएंगी। 15 जून को उपरोजगार कार्यालय इंदौरा में, 16 जून को उपरोजगार कार्यालय नूरपुर में, 18 जून को जिला रोजगार कार्यालय धर्मशाला में सुबह 11 बजे पहुंचकर उक्त कंपनी के समक्ष साक्षात्कार के लिए जो है वो आप आ सकते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत जिला क्षय रोग फोरम, जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति तथा जिला सहरोगता समिति की बैठक वीरवार को धर्मशाला में ADC कांगड़ा विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर ADC विनय कुमार द्वारा टीबी मुक्त ऐप लॉन्च की। ADC ने बताया कि 24 मार्च 2026 को अभियान प्रारंभ होने के बाद मात्र 80 दिनों में जिले में 225 स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए गए। नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच के क्षेत्र में हिमाचल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विकसित भारत वेडाथॉन 2025 में प्रदेश के 3 विद्यालय देश के शीर्ष 100 राज्य स्तरीय विजेता विद्यालयों में शामिल हुए। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: Do you love me? Do you love me?
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया I love you, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं I love you।

गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोता हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया लेकर के हाजिर हो गई है कार्यक्रम ये ही गुड इवनिंग धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला। हमारी संध्याकालीन सभा हो चुकी है शुरू और आज है शुक्रवार 12 जून का हमारा ये दिन। दिन क्या कहूँ, दिन तो हो गया है हमारा खत्म लेकिन अब शाम शुरू हो गई है। बस ऐसे ही दिन निकलते चले जाते हैं और हम आगे को बढ़ते चले जाते हैं।

पशुतो आप बताएं कि आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूं कि आप ठीक से होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही होगा। और भाई, बच्चों की पढ़ने वाली हैं छुट्टियां, तो कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं? और अगर प्लान बना रहे होंगे तो हम आज कुछ आपसे बातें करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और खुशखबरी ये है कि हम हो गए हैं अपने फेसबुक पेज से भी लाइव। तो अगर आप हमें पहले सिर्फ सुन ही पाते थे तो अब देख भी पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में पहले ले लेते हैं आज का विचार। जो थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल से दूर रहते हैं। और आप लोगों ने तो अभी बहुत सारी मंजिलें तय भी करनी है ना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आपने बच्चों की छुट्टियों में कहीं जाना होगा, घूमना फिरना होगा, और उसके बारे में हम आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो कार्यक्रम में यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। आपको तो पता ही है कि हम रहते हैं आपके साथ 6 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी न किसी खास वजह से अपना खास दिवस आज मना रहे हैं। तो देखिए, अब इस मौके पर मुझे ये गीत याद आ रहा है, बड़ा ही प्यारा सा गीत है ये। जी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएंगे आपको। ये हम बातें ही करते रहे नहीं, बातों का भी समय होता है भाई। समाधि फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर। और एक और नाम है जो शायद आपने कभी ना सुना हो, अमीर बाई। जी हाँ, अमीर बाई ने ये गाया है। अमीर बाई कर्नाटकी इनका नाम है। खूबसूरत सा गीत है ये, आइए सुनते हैं। गीत आप सुनेंगे अपने रेडियो सेट्स पर, अभी आप फिलहाल हमें देख पा रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से भी। फेसबुक पेज को जाकर के फेसबुक को ऑन कीजिए और हमारा जो पेज है उसे फॉलो कर लीजिए।

गोरे गोरे वो बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी

0: जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रोज रोज किसी के घर चले जाएं,
1: गाने इस चैनल
0: है ना? तो आपको क्या लगता है, आप सोचिए इस बारे में। हम तो ये कहेंगे कि अगर रोज रोज कहीं जाया जाए तो हमारी इतनी जो अहमियत है वो नहीं रहती है ना? और इसीलिए तो हम भी रोज रोज नहीं आते हैं आपसे मिलने के लिए भाई, जब बुलाया जाता है तभी आते हैं। तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए ले लेते हैं आज का मौसम। तो मौसम का क्या हाल चाल है भाई आज? तो आज दोपहर में ज्यादा गर्मी तो थी नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं कल की बात करूँ तो कल वीरवार को दोपहर में प्रदेश के कई हिस्सों में तूफान के साथ वर्षा ने खूब तबाही मचाई है। पालमपुर में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी जिला के बालाचौक में ओलावृष्टि से फसलें झड़ गई हैं और वहीं शिमला सहित ऊना में तापमान उछाल देखने को मिला है। लेकिन देर शाम शिमला में भी झमाझम बारिश हुई और यहाँ पर तो रुक रुक करके बारिश होती ही रही। ये तो आप सभी लोगों का आंखों देखा हाल है। परंतु श्रोताओं, इसके साथ ही किसानों को नुकसान की मार भी झेलनी पड़ी है। कई जगह पर ओलावृष्टि से टमाटर, मटर और पलम की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। कई स्थानों पर खेतों में ओलों की मोटी परत जम गई और प्लम भी पेड़ों से गिर करके ज़मीन पर आ गए। खेतों में तैयार खड़ी सब्जियां और फलदार पौधे ओलों की मार सह नहीं पाए। किसानों ने बताया है कि उनकी टमाटर और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। देवधर के किसान मोहनलाल और शेगली के टेकचंद ने बताया है कि पलम की फसल ओलों की मार से बड़ी संख्या में फल जमीन पर गिर गए हैं। तो कुछ इस तरह का हाल हुआ है कल। और अभी के मौसम के बारे में बात करूं तो 24 डिग्री सेल्सियस है बाहर का।

हवा में नमी दर्शाई जा रही है 66%। सीधी सी बात यह है कि अभी भी जो है वो मौसम में हलचल बनी ही हुई है। कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये बरस पड़ेगा। श्रोताओं, हम भी लाए हैं आप सभी के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से नगमे चुन चुन करके। आज तो न जाने आपने सुने हैं या नहीं सुने हैं, लेकिन ये मेरी प्लेलिस्ट में आज जरूर हैं। श्रोताओं,

रहा हूँ 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में सुना, और इस फिल्म का नाम था लुटेरा। आज के गीतों में मैं आपको बता दूं कि बातें तो बहुत होने वाली हैं, लेकिन गीतों की में जो खास बात यह है कि इन गीतों में हमारा इंस्ट्रूमेंटल बहुत ज़्यादा है, और इस इंस्ट्रूमेंटल पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गीत शुरू होने से पहले इसमें बहुत सारा जो संगीत है वो बजता है बीच में। कुछ ऐसे मधुर मधुर से गीत लेकर के आए हैं हम आज आप सभी के लिए। जो बात इस गीत में कही जा रही थी कि जवानी में हो जाती है मोहब्बत, लेकिन जवानी

देखो हमारे जो युवा हैं ना आजकल जो हैं वो आंदोलनों के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि शायद कोई उनको बरगला रहा है कि भाई ऐसा हो गया है तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो युवा हैं वो समझदार भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आने वाले। आपका क्या मानना है? पिछले कुछ दिनों में, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि एक आंदोलन हुआ। जिस वजह से वो हुआ वो वजह कोई और थी, लेकिन उसको कोई और ही रूप दे दिया गया था वहाँ पर। और जो समझदार लोग थे उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो केवल और केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो हर आंदोलन में जाते हैं और हर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, या फिर वहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ क्लिपिंग्स चाहिए होती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे ही बस अनर्गल बोलना होता है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी बात हुई है, CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद जब कॉपियों की चेकिंग में सामने आई गंभीर गड़बड़ी को हमारा एक प्यारा सा युवा है सार्थक सिद्धांत उसका नाम, उस छात्र ने एथिकल, वो हैकर है, उसने उजागर किया है इस सारी प्रकरण को। और सार्थक ने इस पूरे मामले पर संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए CBSE के चेयरमैन और सचिव को उनके पदों से हटा दिया।

मामला जानना चाहते हैं आप क्या था? अभी बता दूं या फिर एक गीत के बाद बताऊं? चलिए थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, फिर गीत लेंगे और उसके बाद आगे उस पर प्रकाश डालेंगे। सीबीएसई ने साल 2026 में पहली बार 12वीं की कॉपियों को जांचने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन आधारित ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम जो डिजिटल सिस्टम था वो लागू किया था। और 13 मई 2026 को रिजल्ट आने के बाद बहुत से छात्रों के नंबर उम्मीद से बेहद कम आए। सबको पता होता है कि हमने कैसे कैसे प्रश्न पत्र किए हैं, हमारा इतना एस्टिमेट बनना चाहिए, इतने हमारे नंबर आने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर कम आए। तो छात्रों ने री इवैल्यूशन के लिए कॉपियों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन देखी तो हैरान रह गए। कॉपियों के पन्ने बदले हुए थे, कई छात्रों की हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हो रही थी। फिर निसर्ग अधिकारी नाम के एक अन्य छात्र ने अपने ब्लॉग पर इन डिजिटल कमियों को लिखना शुरू कर दिया। जब सार्थक सिद्धांत को इस असुरक्षित प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो उन्होंने ऑनलाइन छानबीन शुरू कर दी और सरकारी पोर्टल पर टेंडर न मिलने पर उन्होंने टेंडर एग्रीगेटर वेबसाइट के जरिए सीबीएसई के 576 टेंडर दस्तावेजों को निकाला और उनका पूरा विश्लेषण किया। और सार्थक ने अपनी ऑनलाइन रिसर्च में ये पाया कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव किए गए थे और इसके साथ ही डिजिटल चेकिंग की पूरी प्रक्रिया और टेंडर डेटा सेंटर का सिस्टम था वो पूरी तरह से असुरक्षित था, जिसमें कि सुरक्षा चाबियों की भी भारी कमी थी यानी जो सिक्योरिटी कीज होती हैं। और फिर सार्थक ने इन ऑनलाइन दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा करके बाकायदा देश की एक संसदीय समिति के सामने प्रेजेंटेशन दी और पूरी धांधली का पर्दाफाश कर दिया। और ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये सच्ची घटना है, ये वाकई में ये हुआ है, इसलिए मैंने आप तक ये पहुंचाया है। तो ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है ना, उसके पीछे एक मकसद है, उस मकसद को मैं बताऊंगी आपको इस गीत के बाद।

0: आजाद फिल्म का ये गीत है उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

आज़ाद फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब हम रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप हमें फेसबुक पेज से लाइव भी देख रहे हैं, हम आपको बस ये छोटे से अंतराल के बाद जल्द मिलेंगे। तब तक आप अपना फेसबुक पेज ऑन कर लीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला या फिर 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला। जो भी आप सर्च करेंगे हम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे लाइव बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

साथ देख भी सकते हैं। और हमें पता है कि आप लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती थी या होगी कि हमारे जो आरजीज हैं यहाँ पर से बैठ करके बात करते हैं वो देखने में कैसे हैं, और हर एक श्रोता ने अपने अपने दिमाग में हमारी अलग अलग छवि बनाई होती है कि पिंकी कैसी है, सुषमा कैसी है, सुमन किस तरह से दिखती है, और भी हमारे सारे जितने भी आरजीज हैं, सचिन को तो आपने कई बार देखा भी है, हम लोग कहीं अछूते रह गए थे, है ना। और रुचिका भी तो कार्यक्रम करती ही रहती है, और साथ में शशि को भी आप जानते हैं, शशि को भी आपने कई बार देखा है, फेसबुक पेज पर अभी लाइव देखा, और उससे पहले आपने उसे मेरे पेज से बहुत बार देखा है। हमारे कई श्रोताओं को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि उस पेज पर जो आता है आती है जो प्रिया है वो, और जो यहाँ पर कार्यक्रम करती हैं, क्या वो दोनों एक ही हैं। तो हाँ जी, हम दोनों एक ही हैं। अब हो गया आपको यकीन, और हमने आपसे कहा भी था कि हम बहुत जल्द ही आप सबके लिए कुछ और नया शुरू करने वाले हैं, तो ये है आपके सामने रिजल्ट। चाहेंगे कि जब आप हमें फेसबुक पेज से लाइव देखते हैं तो कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और हमें लाइक भी ज़रूर किया करें। हाँ, अगर आपको पसंद आता है तो, अगर नहीं पसंद आता है तो फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं। आपको कहानी सुना रहे थे ना हम, कहानी नहीं भाई, वो सच्ची बात है, सच्ची घटना है, और वो हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। फिर पूरा करें उस बात को कि क्या आखिरकार वो किस लिए, मतलब उसको मैंने आपको बताया, उस खबर को आप तक पहुंचाया। उससे पहले मैं आपको कह रही थी कि युवाओं को बरगलाना बहुत आसान है आजकल, आंदोलनों के माध्यम से उनको, मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि ठीक है चलो चलो सब काम छोड़ो और हम स्ट्राइक करते हैं, हम सड़कों पे बैठते हैं, हम तोड़फोड़ करते हैं, ये करते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन अभी ही कुछ दिन पहले ही मैंने और रुमा ने कार्यक्रम किया था, उसमें हमने आप तक ये भी पहुँचाया है कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी भी है उसको नुकसान पहुँचाना कितना बड़ा अपराध है, और कोई भी युवाओं को बरगला करके उनसे ये अपराध नहीं करवा सकता। जो करवाता है, जो नेतृत्व करता है, उस चीज़ का रिपोर्ट उसी के खिलाफ होती है। और भुगतना भी उसी को पड़ता है। कितने लोग उसमें शामिल थे, क्या क्या था, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी चलो मैं वो आपको बात बता देती हूँ कि ये जो लड़का है सार्थक सिद्धांत, इसने जो भी किया ये इस बात को साबित करता है कि अपनी बात को हम कितने आराम से भी प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। एक फॉलोअर हैं, हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि या तो वो कोई कमेंट करें या फिर वो यहाँ पर हमें लाइक दे दें, अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कार्यक्रम तो। तो ये जो पूरा प्रकरण मैंने आपको बताया, जो भी हुआ, तो इस पूरे प्रकरण से आज के युवाओं और छात्रों के लिए बहुत बड़ी और व्यवहारिक सीख मिलती है। ये घटना साबित करती है, जैसा मैंने अभी कहा, कि बिना शोर शराबे या उग्र आंदोलन के भी अपनी जो बात है सही रणनीति और दिमाग के इस्तेमाल से प्रशासन तक पहुँचाई जा सकती है, व्यवस्था को बदला जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है ना, व्यवस्था परिवर्तन गए इतने साल। बात और कि युवाओं को आजकल अपनी जो कौशल है ना, जो डिजिटल कौशल है, उसको बढ़ा ही लेना चाहिए, या उन्हें इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सार्थक ने उन पत्थरों या नारों का सहारा नहीं लिया,
उसने अपनी

एथिकल हैकिंग और डेटा एनालिसिस की स्किल का इस्तेमाल किया बखूबी। उसने टेंडर के 576 दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया, और जब आपके पास ठोस सबूत और फैक्ट्स होते हैं ना, तो सरकार या सिस्टम भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, उसे भी मानना ही पड़ता है कि हाँ ये सही है। सड़कों पर जाम लगाने के बजाय उसने अपनी रिसर्च को देश की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक संसदीय स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा, और सही चैनल के माध्यम से बात रखने का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों को पद से हटा दिया। तो है ना ये कितनी बड़ी बात, और किस तरह से उस बच्चे ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। और इसी से सारे जो बच्चे हैं बाकी वाले, जिन्हें ये शुबा था कि उनके मार्क्स कम आए हैं, उन्हें भी फायदा हुआ। तो दोस्तों, होता पता क्या है कि उग्र आंदोलनों में अक्सर छात्रों का समय बर्बाद होता है, पुलिस केस का डर रहता है, करियर उनका दांव पर लग जाता है, और इसके विपरीत अगर शांति और दिमाग से किया जाए कोई काम, तो उस काम वो जो काम है वो बिना किसी नुकसान के पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। और ये मामला ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए लाठी से ज्यादा ताकत लॉजिक में होती है, तर्क में होती है। एक बात और, सार्थक ने केवल कमियां नहीं बताई बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है, क्या आगे हो सकता है उसमें, वो भी उसने सुझाया है। जब सीबीएसई के पोर्टल पर साइबर हमला हुआ तो उसने ट्वीट करके क्लाउड प्लेयर जैसी सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी, और सिस्टम हमेशा समाधान ढूंढने वालों की बात सुनता ही है। सिस्टम क्यों, मैं तो ये कहूँगी कि हर कोई सुनता है। आप केवल शिकायतें ही करते रहेंगे, शिकायतें ही करते रहेंगे, ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। भाई हो तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, आपके पास कोई समाधान है तो उसे दे दीजिए और भागीदार बन जाइए। फिर देखिएगा, सब कुछ होता है, बस करने की चाह चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और वो काबिलियत चाहिए जो कि सार्थक सिद्धांत ने दिखाई। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आक्रोश को सही दिशा और कौशल में बदलें। जब आपके पास ज्ञान, धैर्य और सही तथ्य होते हैं तो आप अकेले अपने दम पर भी बड़े से बड़े सिस्टम को जवाबदेह बना सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। हलाकू फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले लता मंगेशकर ने गाया है, और पिछला फिल्म का जो गीत सुना आपने लुटेरा फिल्म का, उसे भी दोनों बहनों ने ही गाया था मिलजुल करके, और इसमें भी दोनों ही बहनें हैं। आइए सुनते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इन गीतों में म्यूज़िक पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, तो उस पर थिरकिए अगर आप पसंद करते हैं नाचना। तो जल्द मिलती हूँ आपसे दोबारा।

जी श्रोताओं, तो अभी आपने सुना हलाकू फिल्म का ये गीत जिसे गाया था आशा भोसले। और लता मंगेशकर ने साथ में मीनू मुमताज ने भी साथ दिया था। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे आज के दिवस की। आज आपको पता है क्या है? आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चों से जबरन काम करवाया जाता है या उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि उन्हें काम करना ही होगा।

अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा है कि एक केस हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कार्यक्रम में जरूर। पर अभी आपको बता दूं कि 12 जून है आज और पूरी दुनिया बाल श्रम निषेध दिवस मना रही है और ये एक घटना हुई है जो कि नाबालिगों की सुरक्षा की खोखली हकीकत को उजागर करती है। एक बच्ची जो कि बाल मजदूर यानी चाइल्ड लेबर के रूप में अपना बचपन खो चुकी थी और दूसरी तरफ जब वो इलाज के लिए अस्पताल जाती है जो कि सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है तो वहाँ उसके आत्मसम्मान को रौंदा जाता है। और आज हम चाइल्ड लेबर डे पर सरकारें बच्चों को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन इस मामले ने ये दिखाया कि जो संस्थाएं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी हैं, जैसे कि महिला आयोग हो गई, अगर उनके प्रमुख भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय सिस्टम की कमियों का जो ठीकरा है वो निचले स्तर के कर्मचारियों या नर्सेज पे फोड़ दें तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो कि हुआ है, उन्हें मजबूर होना पड़ा है इस्तीफा देने के लिए। तो जब तक सरकारी विभागों के उच्च पदों पर बैठे लोग बच्चों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह नहीं होंगे तब तक बाल श्रम का उन्मूलन और बच्चों का संरक्षण केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा दोस्तों।

तो श्रोताओं ये थी वैसे वो खबर, आप सभी लोग जानते हैं, बार बार हमें दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। हरियाणा की वो खबर है कि किस तरह से उस बच्ची को एक्सप्लॉइट किया गया एक सीएमओ के द्वारा। और ये जो मामला है ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र LNJP सिविल अस्पताल का। 15 साल की वो नाबालिग लड़की थी और उसके साथ पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो भी पूर्व CMO, जो कि रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कार्य कर रहे थे। आखिरकार क्यों? और ये जो भी मामला हुआ है उसमें जो महिला आयोग की प्रमुख थी वो रेणु भाटिया जी जो अध्यक्ष थी, उन्होंने सीधे उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने भी निचले स्तर की जो नर्सेस थी उन पर और जो PMO है PMO पर एक्शन लेने की बात कही। इसके बारे में और थोड़ा सा हम विस्तार से बात जरूर करेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल फिर से आपको लिए चलते हैं एक गीत की ओर।

जाते, हाँ आते जाते।

यहूदी फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। और बस सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आपसे मिलेंगे 7:05 पर। जाहिर सी बात है 7 बजने को हैं अब हमारे स्टूडियोज के घड़ी के मुताबिक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने

0: अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत AI मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जी श्रोताओं, समाचार तो आपने सुन लिए हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और ये समाचार साथ में जो हम अभी ब्रेक लेने वाले हैं वो सभी इसी कार्यक्रम का एक पार्ट होता है। तो आइए हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर से आपसे मिलेंगे हम बस इस अंतराल के बाद। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। अभी करनी है आपसे बहुत सारी बातें और भी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: जी श्रोताओं, तो इस अंतराल के बाद अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कठपुतली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन गीतों में स्टार्टिंग में म्यूजिक थोड़ा सा ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि हम बहुत पुराने पुराने गीत चुन करके लेकर आए हैं और वहां पर जो लोग हैं इसमें थिरकते भी हैं। पुरानी फिल्मों में आप जब भी कभी गौर करें तो म्यूजिक हमेशा ज्यादा ही होता था। म्यूजिक को काटने का हमारा कोई इरादा भी नहीं हुआ। लीजिए, हो गया आपका इंतजार खत्म।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

बताऊँ, अब हम वो बात ले लेते हैं जिस बात को हमने अधूरा छोड़ दिया था। तो आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और जो बात मैं आपको बता रही थी वो कुछ ऐसी है कि जब महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया अस्पताल पहुंची तो उनका जो पूरा गुस्सा था वो पीएमओ यानी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर और ड्यूटी पर तैनात तीन महिला नर्सेस पर फूटा, क्योंकि सारे देश में इस बात की चर्चा हो रही है और लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और जो पीएमओ थी उन्होंने कहा कि पीएमओ को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और तीनों नर्सेस को सस्पेंड करने का आदेश उन्होंने दे दिया, लेकिन जनता और नर्सिंग एसोसिएशन को यही गुस्सा था कि उनकी गलती नहीं है तो उनके ऊपर ऐसी गाज क्यों गिरी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को पॉस्को एक्ट SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है, और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ही सरकार ने डॉक्टर की जो सेवाएं हैं वो समाप्त भी कर दी, लेकिन तब तक महिला आयोग और अस्पताल प्रशासन ने मुख्य आरोपी पर कड़ा रुख अपनाने की बजाय आंतरिक स्टाफ यानी पीएमओ और नर्सेस को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। और ये अस्पताल के अंदरूनी कामकाज स्टाफ की ड्यूटी और व्यवस्था की देखभाल करती हैं, तो इसलिए उनको लगा कि भाई इनको ही टारगेट करना ज़्यादा इजी है। और ये पूरे जो CMO होते हैं वो पूरे ज़िले के चिकित्सा विभाग के प्रमुख होते हैं, PMO जो होता है वो अस्पताल के अंदरूनी कामकाज स्टाफ और ड्यूटी और व्यवस्था की देखरेख करते हैं। तो PMO और CMO में फर्क क्या है वो हमने आपको बताया। क्योंकि विवाद की शुरुआत में गाज PMO पर गिरी थी, इसलिए मीडिया और लोगों के बीच में ये बात फैल गई कि असली आरोपी को बचाने या ध्यान भटकाने के लिए सारा दोष अस्पताल की PMO मैडम और नर्सिस के सिर पे मर दिया गया है, और वहां पर शुरू हो गया आंदोलन जो कि उग्र रूप ले चुका था। पहले पेंडॉन स्ट्राइक हुई तो वो कुछ समय के लिए ही थी कि भाई दिन में सिर्फ एक या दो घंटे के लिए, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ती चली गई जब तक कि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया।

और अभी फिर से एक गीत आ रहा है जिसके बोल हैं इतने बड़े जहां में, लेकिन गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। आप जानते ही हैं सुमन कल्याणपुर जी का हाल ही में डिमाइस हो चुका है, लेकिन उनके गीत सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे लता मंगेशकर गा रही हैं। जी हाँ, बहुत ही सिमिलैरिटी है दोनों के गाए गीतों में।

और श्रोताओं, अब हम आपको ले चलेंगे जानकारियों की ओर। जायका इंडिया मिशन ने कांगड़ा और पालमपुर क्षेत्र के भ्रमण के बाद धर्मशाला स्थित होटल धौलाधार हाइट्स में आयोजित समापन बैठक में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना की प्रगति और उपलब्धियों की सराहना की। बैठक में परियोजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण, कृषि उद्यमिता और मूल्य संवर्धन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक डॉ. सुशील चौहान ने बताया कि HPCDP किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ाकर बाजार उन्मुख और उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों से जोड़ने का कार्य कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में कई अभिनव पहलें सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। इस बैठक में ये भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में माचा चाय के उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और प्रदेश की अनुकूल जलवायु, समृद्ध चाय परंपरा और अनुसंधान संस्थानों का सहयोग इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और साथ ही में ये भी कहा गया कि वैश्विक बाजार में माचा चाय की बढ़ती मांग किसानों और उद्यमियों के लिए उच्च आय का नया अवसर बन सकती है। यदि चाय उत्पादक सहकारी संस्थाएं, अनुसंधान संस्थान और निजी उद्यम मिलकर के कार्य करें तो कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है।

हमारे यहाँ पर वैसे भी हमारा कुणाल पत्री और पालमपुर की तरफ चाय के लिए वैसे भी ये मशहूर है, चाय की खेती के लिए। और शौकीन लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर के अपनी सेल्फीज भी लेते हैं और फोटो खिंचवाने में भी यकीन रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप वहाँ पर आएं और ये सब गतिविधियाँ करें, लेकिन उस स्थान को बिल्कुल वैसा ही छोड़ के जाएं जैसा कि आपने उसे पाया होता है, यानी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गई थी कुणाल पत्री माता मंदिर की तरफ भ्रमण करने के लिए, या फिर यूं कहूं कि माथा नवाने के लिए, टेकने के लिए। और जब रास्ते में वापस आई तो जो चाय के बागान आती है ना, वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है मांडी एस्टेट का, वहाँ पर बनाया गया है वो। लेकिन वहाँ लोग तो बहुत आते हैं, वहाँ जो ओनर हैं, जो वहाँ पर विक्रेता हैं, वो तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु कितना ध्यान रखेंगे जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उनके डस्टबिन ऊपर ऊपर तक भर करके बाहर बाहर तक निकल रहे होते हैं, और आसपास में लोग इस तरह से वो कप्स जो कागज़ के होते हैं वो फेंक करके चले जाते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि इतनी सुंदर जगह आप देखने के लिए आ रहे हो, कम से कम उसकी छटा तो वैसे ही रहने दीजिए, ताकि कोई जब और दूसरा आए तो उसे भी सुंदर लगे, उसे भी अच्छा लगे, वो बाहर से ही देख करके भाग ना जाए कहीं। और अब तो सीज़न शुरू हो चुका है, आप लोग आ रहे हैं हिमाचल घूमने के लिए, तो इन बातों को थोड़ा सा तो ध्यान में रखिए, क्योंकि आप हमें फेसबुक पेज से लाइव भी देख रहे हैं और हमारे रेडियो गुंजन ऐप से देश विदेश में बैठ करके सुन भी रहे हैं, तो सभी तक हमारी आवाज़ पहुंच तो रही ही है 91.2 FM रेडियो गुंजन के माध्यम से। अब तो ये भी तर्क नहीं आप दे सकते कि हमारी जो रेंज है वो कम है तो आप तक पहुंचती नहीं, भाई बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, सब तक हम पहुंचते हैं और हमें इस बात की खुशी भी है। और 7:30 होने को हैं श्रोताओं, अब हम लेंगे फिर से एक छोटा सा अंतराल, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की और धड़कन हिमाचल की। और इसके साथ साथ आप 88.4 मेगाहर्ट्ज ढटवाल की आवाज़ से भी हमें सुन रहे हैं, और वहां के सभी श्रोताओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आज का पंछी फिल्म का गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब बात करेंगे हम आज के दिन के बारे में कि आज हम जो विश्व बाल श्रम दिवस मना रहे हैं, वैसे हमने पहले भी आपको बता दिया कि इस विशेष दिन की शुरुआत 2002 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा की गई थी। पूरी दुनिया का ध्यान उन मासूम बच्चों की तरफ खींचने के लिए जो स्कूल जाने की उम्र में कारखानों, होटलों और खेतों में कड़ा श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। का मुख्य मकसद बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म करना और बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन वापस दिलाना है। गरीबी, शिक्षा की कमी और व्यसकों को रोजगार न मिलना इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। जब माँ बाप के पास कमाने का जरिया नहीं होता तो वो ना चाहते हुए भी बच्चों को काम पर भेज देते हैं। श्रोताओं, आपको पता है इस साल की थीम क्या है? थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, व्यसकों के लिए सम्मानजनक काम। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों के हाथ में खेल और किताबें होनी चाहिए और काम करने की जिम्मेदारी और सही वेतन बड़ों को मिलना चाहिए। और अब आपसे साझा करूंगी मैं एक कहानी, सच्ची घटना है ये। वैसे मेरे पास दो हैं, अगर कार्यक्रम में समय रहेगा तो दोनों ही आपसे साझा करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के रहने वाले अमरलाल की कहानी है जो कि किसी भी श्रोता की आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद जगा देगी। अमर का बचपन कंकड़, पत्थरों और धूल के बीच बीता था। महज कुछ साल की उम्र में उन्हें एक पत्थर की खदान यानी क्वारी में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा। उनके हाथों में पेन की जगह भारी हथौड़े थे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने अमरलाल को उस नर्क से रेस्क्यू किया। आजाद होने के बाद अमर ने पढ़ाई की। जो बच्चा कभी पत्थरों को तोड़ता था उसने कानून की पढ़ाई की और आज वो वकील यानी लॉयर है और खुद कोर्ट में खड़े होकर के उन हजारों बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज भी बाल मजदूरी के जाल में फंसे हुए हैं। सोचिए, अगर उस दिन अमर को खदान से न निकाला जाता तो देश एक बेहतरीन वकील को खो देता। और अगली कहानी जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रलेखित है, जो कि तंजानिया के एक बच्चे हामिस की कहानी है, जो कि सिर्फ 12 साल का था जब गरीबी के कारण तंजानाइट, एक कीमती रत्न होता है, उसकी खदानों में काम करने लगा। उसे जमीन से 200 मीटर गहरे संकरे गड्ढों में रस्सी के सहारे उतारा जाता था, जहां भयंकर गर्मी, उमस और पूरी तरह से अंधेरा होता था। सिर पर एक टॉर्च बांध करके वो बच्चों वाले संकरे रास्तों से औजार नीचे पहुंचाता था और कई बच्चे इन खदानों में दम घुटने या फिर चट्टान खिसकने से जान गंवा देते थे।

तब एक स्थानीय सामाजिक संस्था और ILO की मदद से हामिस को भी इस खतरनाक काम से बाहर निकाला गया। उसे वापस स्कूल भेजा गया। उसके परिवार को आर्थिक मदद की गई ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और आज हामिस सुरक्षित है, पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज भी दुनिया भर में लगभग 138 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी के दलदल में फंसे हुए हैं। क्या ये बात जानते थे आप? हमें तो बस अपने बच्चे नजर आते हैं ना कि नहीं, यहां पर आसपास में सब कुछ ठीक है, अच्छा है, हम इधर उधर कहीं नजर दौड़ाने में सक्षम ही नहीं है, हम केवल अपने में ही फंसे रहते हैं। और इनमें से करीब 54 मिलियन बच्चे ऐसे खतरनाक कामों जैसे कि पटाखा फैक्ट्री, माइनिंग, केमिकल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जहां पे उनकी जान को सीधा सीधा खतरा है। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में है, जहां बच्चे खेतों में कीटनाशकों और भारी औजारों के बीच में काम करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी चाय की दुकान पर किसी छोटे बच्चे को छोटू कहकर आवाज लगाते हैं ना, तो हम सिर्फ उसे काम के लिए नहीं बुला रहे होते बल्कि हम उसके अधिकारों को भी दबा रहे होते हैं। बाल मजदूरी को रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएं, इस तारीख को हम सक्षम बनाएं, यानी कि हम कुछ धरातल पर तो लाएं, केवल रेड कार्ड ही दिखाते रहें कि भाई अब इन बच्चों को जो है हम बाल श्रम को रेड कार्ड दिखाएं और हर बच्चे को उसका स्कूल और उसका बचपन ताकि वापस मिल जाए, क्योंकि बच्चे कमाएंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अब चलेंगे हम प्रादेशिक समाचारों की ओर।

0: कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ

0: नृत्य में जारी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले उत्सव और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में इस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
2: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
1: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव नतीजे प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष का स्पष्ट सबूत है। बिंदल ने आज शिमला में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि जनता विश्वास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी है। बिंदल ने यह भी कहा कि नड्डा के प्रदेश दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह अतुलनीय और भारत के पुनरुत्थान का स्वर्ण काल रहा है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल की अवधि पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिलने से वर्षों से रुके हुए काम संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में

0: सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली भी की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चरागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्योहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिंहुता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकास खंड बसंतपुर में आयोजित 3 दिवसीय आपदा रक्षक कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी अमित टुटेजा ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सामुदायिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नव निर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नव निर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
1: की डेट मांग रहे हैं, जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है कि विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की अनुपस्थिति टीम को खलेगी। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर भी है। उन्होंने कहा कि आगामी विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी में अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज कांग्रेस के 5वें स्तंभ कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जंटा ने शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभ्रा जंटा ने कहा कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया में सक्रिय युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है।
2: ऐसे युवाओं को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर आम जन की आवाज और आम जन के मुद्दों को रखा है, उन लोगों को अपने साथ या फिर मैं ये कहूं कि उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ नाहन में, तो ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम जो है भारतीय युवा कांग्रेस ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लॉन्च कर रहा है, जो निडरता के साथ, निर्भयता के साथ असली मुद्दों को जो है ग्रास रूट लेवल पर उठा।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान सोलन जिला के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने अगले दो दिन तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रखने की संभावना जताई है।
3: हिमाचल प्रदेश में WD कल 11 जून से हुआ है और ये जो है रुक रुक के इसका असर हमें 13 जून तक पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिड हिल्स लोअर निचले मैदानी इलाकों में दो दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। हवाओं की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के टाइम पे 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है इन सभी जिलों में। सिरमौर जिला, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है 12 जून को, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्योहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: श्रोताओं, 91.2 FM रेडियो कुंजन धर्मशाला से भी अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इस खूबसूरत गीत के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और एंजॉय कीजिएगा कल का मैच, जो कि हमारे प्यारे से खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: है NAK+, मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ

0: विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
3: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
4: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
5: Oh no!
3: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ।
4: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
5: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no.
5: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ।
6: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रही हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रिक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रिक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रही हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
5: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no.
5: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ।
6: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

वक्त आप सभी ने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: हेलो जिमी, राहुल आ गया एंट्री पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।
4: मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर है।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।